चाहते हो खुद के लिए सम्मान, तो कुछ सम्मान दूसरे का भी करना सीख लो। चाहते हो खुद के लिए कुछ सम्मान, तो कुछ सम्मान दूसरे का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं पर झुकना भी सीख लो। 5:39 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण

0: जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और आईआईटी मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today, Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle

FM Rainbow 101.9, musically yours.

हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल और चाल? जी हाँ दोस्तों, एक और कमाल का दिन, एक और कमाल की सुबह, और ये सब करने आपके नाम विथ ब्यूटीफुल ट्रैक्स और खूब सारी इन्फॉर्मेशन, खूब सारी बातें लेकर मैं आपका दोस्त श्रेत आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ दोस्तों, संडे का दिन है, दैट मीन्स कि आज बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको अकम्प्लिश करना है, कंप्लीट नहीं करना, अकम्प्लिश करना है, क्योंकि संडे जब भी आता है तो हमें वो सब चीज़ें कंप्लीट करनी होती है जो हम वीकडेज में नहीं कर सकते ड्यू टू आर ऑफिशियल वर्क। हम काम के उस चक्कर में व्यस्त रहते हैं, थोड़ा वक्त निकाल भी लेते हैं तो घर आके थोड़ा रेस्ट करना पसंद करते हैं, पर आज सब चीज़ें एक दिन में हो सकती है। जितना चाहे उतना रेस्ट करें, फिर वो चीज़ें करें जो आप बहुत दिन से करने का प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें होंगी, बहुत से गाने होंगे, हम होंगे, आप होंगे, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 पर। तो दोस्तों, एक और प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बर्ड के बारे में, कुछ ऐसे बर्ड्स के बारे में जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चलते हैं और उनके पास एक चीज नहीं होती जो आपके पास होती है। आपके पास होती है तभी भी कंफ्यूजन होता है कि राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं, पर उनके पास नहीं होती, फिर भी वो सटीक उसी जगह पे आके रुकते हैं जहां पे उन्हें पहुंचना होता है। करेंगे बहुत सी बातें आपके साथ, देश की, दुनिया की, यहाँ की, वहां की, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है। अभी के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक और प्यारे से गाने के साथ। दिस वन इज सैन्योरिटा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं श्रेता आपके साथ और करते हैं आपसे बहुत सारी बात। और

अब बात करते हैं आज के दिन में जो स्पेशल चीज़ हो रही है। आज है 6 सितंबर और आज का दिन नेचर लवर्स के लिए थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज वर्ल्ड शोर बर्ड्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और अब सोचिए दोस्तों कि ये बर्ड्स जो होते हैं ये छोटे छोटे से होते हैं, जो लेक साइड्स, रिवर के, वेटलैंड के आसपास, कोस्टल एरिया के आसपास में पाए जाते हैं। और इनकी सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि सम ऑफ दीज टाइनी बर्ड्स ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ड्यूरिंग माइग्रेशन। जस्ट इमेजिन, एक छोटी सी बर्ड है, इतनी लंबी जर्नी, और कोई उसके पास मैप भी नहीं है। मैं मैप की बात कुछ देर पहले कर रहा था, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि कभी कभी हमारे पास मैप होता है पर हम लेफ्ट लेने की जगह कभी कभी राइट ले लेते हैं, या फिर पहले वाला लेफ्ट ले लेते हैं। और अगर हम जब कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने ड्राइव कर रहे हैं, और पड़ोसी जो अपने आस में पास में बैठा है उसको हमने मैप दे रखा है, उसको बोलते हैं कि अरे एक काम करो, तुम मेरे को मैप समझाओ फिर मैं चलूंगा, यकीन मानिए दोस्तों, मेरे ख्याल से हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो जो पास में पड़ोसी बैठता है, जो अपना साथी बैठता है, वो आपको हमेशा उल्टा मैप ही दिखाता है। मतलब वो राइट लेने का कभी कभी लेफ्ट बोल देता है, कभी कभी रुको रुको रुको बोल देता है, कभी सडन से लेफ्ट लो, कभी सडन से राइट लो। ये बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ होती है दोस्तों। लेकिन इस बर्ड की अगर बात की जाए तो नेचर ने उनको एक अमेजिंग सा नेविगेशन सिस्टम दे रखा है, और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हमें डेस्टिनेशन पता होती है बट हमारे लिए जो रास्ते की रोड्स होता है वो क्लियर नहीं होती कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। कभी करियर को लेकर कंफ्यूजन रहता है, कभी रिलेशनशिप को, तो कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, कभी बस ये समझ नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। लेकिन ये बर्ड, ये ब्यूटिफुल से छोटे छोटे बर्ड जो हैं, हमें एक लेसन देते हैं कि कीप मूविंग, ट्रस्ट योर डायरेक्शंस, अपने डायरेक्शन। जी हाँ, और हर चीज का आंसर हमें इमिडिएटली नहीं मिलता, ये चीज हमें जरूर अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि कोई भी चीज का आंसर जल्दी मिल जाए, एकदम इमिडिएटली मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी वक्त को भी वक्त देना चाहिए। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप एंड देन नेक्स्ट वन। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी बातें जो है, ये पूरा वक्त जो है हम अपने लिए बात करते हैं, और साथ ही साथ इन छोटे छोटे वर्ड बर्ड्स से भी सीखने का एक मौका मिलता है। ऐसी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग सी बातें होंगी आपके साथ। बने रहे हमारे साथ और सुने अगला गाना जो आपके रेडियो सेट्स पर अब आने वाला है, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में, और गाना कहता है बांवरा मन।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9, रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं श्रेता आपके साथ और शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब। और बहुत ही ब्यूटीफुल से गाने आप सुन रहे हैं, और ये जो गाना आप अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले, ये था फिल्म हिंदी मीडियम से, और बहुत ही खूबसूरत सी ये फिल्म। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसमें जिस तरह से एक मैसेज दिया गया है एजुकेशन को लेकर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। बाकी पढ़ने की बात आती है, लिखने की बात आती है, तो अ बुक कैन चेंज द वे यू थिंक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली रीड अ बुक। हम में से कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो, मतलब बहुत साल पहले की बात है ऐसे बोल सकते हैं, और बहुत से लोग आज भी पढ़ते हैं किताबें, वो तो भाई कमाल की बात है। और जो पढ़ते हैं नॉट ऑन लाइक इंस्टाग्राम, नॉट ऑन व्हाट्सएप, नॉट ऑन यूट्यूब कमेंट्स, आई मीन एक्चुअली में आपने कब कोई बुक उठाई और उसको पढ़ा? नहीं ना, मतलब अभी अभी आप सोच रहे होंगे यार, हाँ यार कब पहले, बहुत पहले पढ़ते थे, स्कूल डेज की बात थी, कॉलेज डेज की बात थी, जब पढ़ाई करते थे वो किताबें पढ़ते थे, पर उसके बाद में कभी चांस ही नहीं मिला। हम कभी कभी लेके भी आ जाते हैं किताबें, कभी कभी बुक्स घर पे लाते हैं कि अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिलीव मी एक दो पेपर के बाद में फिर ऐसा लगता है कि नहीं। पर दोस्तों आपको पता है कि डीप थिंकिंग के लिए हमारे पास टाइम तो बहुत कम हो गया है, पर अगर आप पढ़ते हैं किताबों के जरिए तो हमारी जो थिंकिंग का जो लेवल है वो एकदम गहरा होता जाएगा। अब जरूरी ये नहीं कि आपको बुक्स पढ़ने के लिए किसी इवेंट में जाना पड़े, कोई आपके बाजू में बैठ के पढ़े तो आप पढ़ो, नहीं। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, अभी आपके घर से, इसी समय से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने घर में कोई भी एक पुरानी किताब होगी, आप ही खुद ही लेके आए थे 2 साल पहले या 6 महीने पहले, कोई बायोग्राफी होगी, कोई हिस्ट्री होगी, या शायद कोई किताब ऐसी होगी जिसको आपने खरीदा है पर भूल गए हैं कि हाँ अब तब पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा। तो टुडे इज अ डे, उसे निकालिए और 10 पेजेस, सिर्फ सिर्फ 10 पेजेस आप उस किताब के पढ़े। बिकॉज रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, रीडिंग चेंजेस द वे यू थिंक। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ते हो तो आपका सोचने का जरिया, सोचने का नजरिया जो है बदल जाता है, फिर जरिया भी बदल जाता है। जब आप किसी दूसरे इंसान की स्टोरी पढ़ते हैं आप उसकी दुनिया को समझते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं आप अपने पास्ट को समझते हैं, और जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है आपकी ज़िंदगी में। तो बस किताबें निकालिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है रेनबो पे भी, किताबें पढ़ने के लिए। और जो यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 15 साल से स्टार्ट है, और 15 से लगाकर छोटी छोटी ज़्यादा बड़े उम्र वाले नहीं, 15 से 25 साल के बीच में यंगस्टर जो भी हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक कमाल की चीज़ होने वाली है रेनबो पे, उसकी भी जानकारी आपको हम देते जाएंगे, जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जो बड़े लोग इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, वो उनके घर में अगर कोई यंगस्टर है जो 15 से 25 साल के बीच में, तो उनके लिए कमाल की चीज़ होने वाली है यहाँ पर किताब किताब पढ़ना, यानी पढ़ना ना, कोई भी किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पढ़ना, जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो कोई पढ़े और हम सुने तो इतना खूबसूरत सा लगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये गाने हैं ना, इन्हें हम जब भी सुनते हैं तो इतना दिल के नज़दीक ही पहुंच जाते हैं कि आपको क्या बताएं। चलिए अभी के लिए आपको लेके जाते हैं एक और प्यारे से गाने के साथ साथ, हर्षदीप कौर की आवाज़ में, और गाना है फिल्म हिचकी से। और इस फिल्म की बात की जाए तो इसमें जो रानी मुखर्जी, उनका किरदार एक टीचर का होता है दोस्तों, और जो टीचर हमें पढ़ाती है ना वो जिंदगी भर तक हमें याद रहता है।

वाह, क्या कमाल के गाने हैं। वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9, रेनबो एट कलर स्टूडियो लाइव। मैं हूं श्रेत आपके साथ और शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब। और वक्त हो चला है 10:55 और टिक टिक करती घड़ी आगे की तरफ चल रही है। और अब अगर बात की जाए तो हम एक और गाने के साथ आपको लेके चलेंगे। गाने के उस तरफ हम चलेंगे हमारे एक बहुत ही कमाल के प्रोग्राम जिसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के साथ, और उसके उस तरफ, जी हाँ, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज इन हिंदी और ठीक उसके बाद न्यूज इन इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका और मेरे बातों करने का सिलसिला जो है जारी रहेगा नमस्ते हेलो आदाब पर। तो बने रहे हमारे साथ, एक प्यारे से गाने के साथ आपको लेके चलता हूँ। ये गाना है अरिजीत सिंह साहब की आवाज में और गाना कहता है आज से तेरी।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं उन हस्तियों की, उन घटनाओं की, उस शख्सियत की जो किसी न किसी प्रकार हमें प्रेरित करती है और हमें एक नया पक्ष जानने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर देती है, हमें कुछ पढ़ने का अवसर देती है, कुछ जानने का अवसर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा ही प्रेरित करते हैं, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे, आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदीप जी, आपका स्वागत।
2: धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबेन।
0: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर की लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
1: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब

0: हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार। लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत ही उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखे अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में, तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी।
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं। तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं, तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं, उत्तम कुमार सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है,
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी। बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायर या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी,
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसी ने बनाई, उनको ध्यान में रखकर
1: जी।
2: तो वो इस तरह का उनका वो था, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया है, बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह के सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के है, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन को 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें तो नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे इस तरह की इसकी फिल्म बनाई कि एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कलकत्ता से, आपको कोलकाता बोले आप, कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार को मिलती है, शर्मिला टैगोर,

0: जो शिवम्या टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों भी जो भी रही और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शिवम्या टैगोर के साथ। तो ये जो वो जो नायक का वो जो था इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा अभी फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए। बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है। आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पे ध्यान देते थे। वही खूबियां उत्तम कुमार ने देखी, निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक इतने की और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखी है चाह है वो बंगाल के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य में भी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ तो इतना सैलाब था, जन सैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के रूप में शायद कभी ना देखा गया। बाद में तो हम चाहे नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म को, सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अंश हुए पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे। यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
0: देखिए उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहां इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहां खूब चली और उत्तम कुमार बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली बनाई और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई। अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहां बंदी वहां चली यहां नहीं चली, लेकिन अमानुष वहां भी चली और यहां भी चली। तो उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो अमानुष का टाइटल सॉन्ग है और उसको जो इंदिवर ने लिखा है और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
0: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द है, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर शिवम्या टैगोर पीछे लेटी हुई है और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है। लेकिन
1: और ये शब्द भी अमानुष
0: बना के छोड़ा, अमानुष को तो अभी भी लोग सोचते अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति हो जो अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं
2: अमानुष। जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के, क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर, जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ, क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे
1: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे,
2: नायक की छवि से जोड़ पाएंगे। जो सत्यजीत रे ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम कुमार।
0: असल में इनका जो है उसके अंदर एक शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल का बड़ा अच्छा है लेकिन वो शराबी बन गया है बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शिवम्या टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है वो, तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए रहे हैं, तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं और भी फिल्मों की कथा उन्होंने भी
2: लिखी,
0: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में जो भी फिल्म आई वो कमलेश्वर ने लिखी।
1: यानी ये गीत हमें बहुत सारी कहानियां एक साथ
0: जोड़ता है।
2: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई

0: जी
1: कि
0: बिल्कुल
1: ये नाम रख कर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, वो यह फिल्म बहुत पसंद की
2: अब
1: गई।
2: देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा।
0: जी
2: तो
0: जी,
2: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी तो ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: चाहूंगी। हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था
0: जी।
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम। लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जो घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से
0: जी,
1: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन होने वाला था, उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था। तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है
0: जी।
1: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई, 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी
0: जी।
1: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं। जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं
0: जी।
1: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
0: जी।
1: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब
0: जी।
1: इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया, वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर, वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है, उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे, और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है
0: जी,
1: कि आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की
0: जी। और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे।
1: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
0: जी,
1: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी, और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी
0: जी,
1: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा कलेक्ट किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
0: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। और दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है कि 5,000 रूपये उन्होंने उससे में दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी
0: जी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यमवर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी, और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है। कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहे ये सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना

0: सारा भारत में तरक्की शुरू की उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया। जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उबारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो ये बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया। विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से या अपनी, और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से, पाथेर 45 से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था। तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने। कि अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हो, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाए, सब जगह देखे जाए। तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाकर बैठ के उनको फूल दिया, सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था, तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो उनकी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। विजयंती माला जी से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहते हैं उस बात का जरूर जिक्र करती हैं कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई। विजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए। आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा शताब्दी का।
1: जी, इस अर्धशताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी

0: निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
1: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
0: जी
1: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं। लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
0: जी
1: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम,
0: जी
1: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
0: जी
1: जो उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया।
0: जी
1: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी। और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि अग्नि परीक्षा जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था, छोटी सी मुलाकात जिसमें वो खुद ही थे।
0: जी
1: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला में बनी,
2: आशापूर्ण देवी के उस पर थी।
1: हाँ
0: जी
2: उपन्यास पे
0: उपन्यास
1: जी जी
0: पर
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही क्लासिक फिल्म है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी
0: जी,
1: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो फिल्म जिसका नाम चुपके चुपके है, और धर्मेंद्र उसमें
0: परिमल त्रिपाठी का
1: परिमल त्रिपाठी
0: का
1: रोल में आते हैं, और धर्मेंद्र की वो बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी च्वाइस में अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से
0: जी,
1: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं
0: जी।
1: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम कुमार जी ने निभाया था।
0: और अंगूर
1: अंगूर गुलजार साहब की अंगूर वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये देखते हैं
2: शेक्सपियर के उस पे थी
0: जी, कॉमेडी ऑफ
2: एरर्स जी, लेकिन इसको बांग्ला में बहुत चली वो।
1: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं
0: जी।
1: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
2: वैसे धोती कुर्ता बांधा जैसे उसमें बांधा
1: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और राजेश खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था
0: जी।
2: और इसका ये बता दो, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के
1: जी,
2: वो भी हुगली में वही पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहाँ वो किया गया। और शिवया टैगोर बता रही थी कि वहाँ इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, कहते हमने उसमें भी काम किया, पांच दिन हमने उस गाने को शूट किया वहाँ पर।
0: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय।
1: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और बहुत ही सफलता पूर्वक निभाया। राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
0: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा
0: जी,
2: अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार

0: चटर्जी जैसे आप जानते हैं, दोनों
1: जी
0: बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय का नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण
1: जी
0: कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की। इनके छोटे भाई थे, 5 साल छोटे थे इनसे,
1: जी
0: और उन्होंने, वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है, तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो की फिल्म थी 1948 में, दृष्टिदान, दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से,
1: जी
0: तो वो फिल्म नहीं चली। तो उनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही। उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार। उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था। आप देखिए, इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो है सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, या जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर। अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने, हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत भी इधर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे, तो दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के, वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है। फिर बाकी और एक बेटा था, उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था, वो इनके जो फादर थे, हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा, उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि ये सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देखते, ये नहीं कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो थिएटर में काम करना शुरू किया। तो फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टिदान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई। और फिर देखिए, वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार, आज हम याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो उनको भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए, सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार, उत्तम कुमार कौन है, नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगवान में ज्यादा रहे, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने, और जैसे बताया
1: संजीव कुमार जी से चेहरा
0: संजीव कुमार
1: साहब,
0: देखिए जो आदि फिल्म है वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी, और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले, उत्तम कुमार को। अब आपने बात की, मुझे याद आ गया, जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे।
1: किस फिल्म में?
0: आंधी फिल्म में, 1973 में जब ये फिल्म हुई, तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें,
1: सुचित्रा
0: सेन इसके अंदर थी, और सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह
1: जी।
0: तो लेकिन आप देखिए, वो आंधी फिल्म है, वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही, तो इनकी दो अभिनेत्रियां तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह। बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का, फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया, दूसरे ने ज्यादा कमाया, तीसरे ने कम कमाया, तो इस तरह आता था कि वो तो आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में, रंगमंच में बहुत काम किया। रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
1: और उस समय रंगमंच जन जागरण का कार्य करता था।
0: उनकी जेनिफर जो उनकी पत्नी रही, वो भी उनको शशि कपूर को वही मिली, तो वो थिएटर करती थी उन अपने फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है, रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये

0: तर्जुमा, उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रंगमंच के अंदर।
1: जी
0: उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा जिसने फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे। तो इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है, खासतौर कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे, वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा की
1: राजधानी है संस्कृति। जी बिल्कुल।
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे।
1: जी
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो मैं चाहता हूँ उसे मेंशन करूँ, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी,
2: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी,
2: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव
1: जी,
2: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने
0: भूपेन हजारिका को
2: मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है। और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है, कि सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
0: राज कपूर तो ऐसे हैं, उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
1: जी,
0: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो ही सॉफ्ट पावर की चर्चा की।
1: बिल्कुल, कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
0: राज कपूर भी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े जिनको बुलाया जाता, दोनों ने अभिनय, सत्यजीत रे उस तरह के, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते, उनकी जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उत्तम कुमार की वहाँ संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी मनाई है, अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सबकी हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना। तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका थी, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी, और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है, और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे, और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है, और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है।
1: जी।
2: वह विरासत की

0: कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, सामाजिक काम करते हुए।
1: जी
0: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: इस तरह की कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की

0: हाँ यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10, 20, 25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है।
1: जी
0: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेन जी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे
1: जी
0: आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
1: जी
0: कि ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी।
1: जी तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
2: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है।
1: जी
2: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है।
1: जी
2: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअली लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते
1: जी,
2: हैं।
1: लेकिन बहुत
2: हमने क्या
1: सतही
2: कि
1: है ये
2: देखिए,
1: सब
2: हमने जिस
1: चीजें।
2: दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में,
1: जी
2: कि जब ये बहुत आप किसी से कोई आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं, आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था।
1: जी
2: हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 पर उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरमन साहब बच्चन जो मेरे गुरु रहे, हम
1: जी
2: तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे, हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है कि उनके मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल दे, परसों दे, तरसों दे, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए, कभी कभी दीजिए, लेकिन पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने, लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, तारचंद बढ़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, तो उस समय के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। तारक बड़जात्या जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसकी स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं। उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी अम्बेसडर कार में सुनाए, जनपद पे गाड़ी रोक कर जब हमने रिकॉर्डिंग कर कराया, आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी, उसे सराह ली जाती थी कि आप जानते हैं, सिनेमा देखते हैं, लोगों की नफी पहचानते हैं, तो आप बताइए क्या है। हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म का चित्रा बनाया, चलेगी नहीं यही नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो के महावीर बड़जात्या थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे को फोन आया, मैं आप चिंता मत कीजिए, ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ, तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें ये नहीं कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए। हम आपके कौन के लिए, सब लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया। इसने कहा था ऐसे होगा, पोस्टर दिखाया कि ये होगा, तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे, गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचे हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाए, पॉपुलर हो जाए, बहुत सारे पैसे कमा लें। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करें, तो अच्छा लगता है कि आज भी हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसे प्रदीप सदाना ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा। तो ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए, हवा हवाई बातें ऐसे ना करें कोई भी, अपना जो भी लिखे हैं, जो भी बोले हैं, जो भी करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से करें, क्योंकि जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें। इस सबसे मैं चाहूंगा
1: जी,
2: ईमानदारी कर्मठता से करें, परिश्रम से करें, दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें, ये नहीं कि आपने लिख दिया, तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी पहचान होगी।
1: यानी फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, जिम्मेदारी भी है। और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं उनमें गंभीरता
2: हमारे
1: भी
2: बातों
1: बनी रहे।
2: पे लोग अपना देखने जाते हैं
1: जी।
2: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को, मैं सबसे पहले नंबर टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया, आज की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को जो क्योंकि

0: मनोरंजन का साधन होता था उस समय। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें, तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या भैया मैं परिवार के साथ घूमने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं। तो वो जो हमने दौर देखा है हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी तो उसको मैं सर झुकाता हूँ हमेशा, इतना सम्मान दिया तो आज भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूँ।
1: जी, यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है, और ये समझ बनी रही है इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है। और पुरस्कार विजेता जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी संजीव जी, चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
2: श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में?
1: जी,
2: अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख के कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है
1: जी।
2: लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को भी युवा ही मानता हूँ, है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रही है जो भी चीजें, वो केवल खेल तमाशा नहीं है
1: जी।
2: सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है, तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है। आप उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं, केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए। हाँ, उस नजरिए की फिल्में कुछ आती हैं वह एक अलग मसला है। आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से, तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है सिनेमा। तो फिल्म अगर हम देखते हैं, किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ कितना पाए हैं। अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिख दें कि हमें पसंद आ गई? यह क्या यह समीक्षा है? फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है, फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है। जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे, पहली सूचना आप देते हैं फिल्म की गुणवत्ता के बारे में, आप उसमें बताते हैं हाँ ठीक है फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए ये फिल्म कैसी है। दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां है तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के संदर्भ में है। ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर मूवी से कर दें, और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें
1: जी,
2: ऐसा नहीं होता। ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती
1: जी। तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो है वो सामने रखे जाएं, उसे फिल्म समीक्षा हम कहेंगे कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी जी। और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत,
2: आनंद आश्रम का एक गाना है
1: जी,
2: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में
1: जी।
2: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी।
2: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाए तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा
1: जी। ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हमारे ऐसे दो विशेषज्ञ जिनके माध्यम से हमने उत्तम कुमार जो अभिनेता थे उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को जाना, हमने जो समसामयिकता रही उनके अभिनय की उस दौर की उसे पहचाना, और फिल्म लेखन की गंभीरता क्या है, वो कैसे समाज पर अपना असर डालता है, किस तरह से करियर के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी भी है, अपने दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से हमने ये समझा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव, जो कि एक लेखक भी हैं और स्वर्ण कमल पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में आपको प्रदान किया जा रहा है इस बार का, और साथ ही प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 50 वर्षों से आप अलग अलग शैलियों में अलग अलग माध्यमों में लगातार सक्रिय रहे हैं, आप स्तंभकार रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं, विभिन्न चैनल्स में हम आपको देखते हैं पैनलिस्ट के तौर पर, समीक्षक के तौर पर, जाने माने फिल्म समीक्षक भी आप हैं, और दोनों का संदेश यही कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब हम कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, तो जो सिनेमा के पात्र हैं वो भी हम में से ही निकले हुए हैं, और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो अभिनय हम पर्दे पर देख रहे हैं उसके इतर जाकर हम उस व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करें जो उस पात्र को जीवंत कर रहा है पर्दे पर। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमने आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की अभिनेता उत्तम कुमार को। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से, और साथ ही हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
5: హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के

0: श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो एट कलर्स टू योर लाइफ और मैं हूं श्रेता आपके साथ। शो है नमस्ते हेलो आदाब। वक्त हो चला है 12:12 और 12 सेकंड। वाह क्या बात है। मतलब आजकल एक नया सा ट्रेंड चल पड़ा है जहां पे ऐसे सेम नंबर वाले टाइम होता है ना, जैसे 11:11, 11:11, 11:11। तो लोग आजकल विश मांगना स्टार्ट करते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी वो विशेज जो है पूरी भी होती है। अब अपने अपने तरह से दुनिया को हम जिस तरह से अच्छा ब्यूटीफुल करना पसंद करते हैं वैसा होते हैं और पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, होता यूँ है कि हम कई बार नेगेटिव थॉट्स के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें यकीनन उसी के अकॉर्डिंग आगे की तरफ चलती रहती है। हम पॉजिटिविटी हमारे दिमाग से दूर दूर जाती है, पर यकीन मानिए अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है फिर भी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में है और आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो बिलीव में आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। वैसे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया था मेरे को, दोस्त ने कहा कि मुझे मेरा फेवरेट गाना सुना है। वैसे ये रिक्वेस्ट शो नहीं है, हम अच्छे वाले गाने ही आप सभी के लिए लाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगला गाना भी कुछ ऐसा ही है जो आपको यकीनन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो आपके दिल के बेहद करीब पहुँचने वाला है। और एक आपको पता है दोस्तों, जब ये चांदी या फिर सोना होता है उस पर एक मार्किंग होती है इतने परसेंट की, किसी भी ऐसे लोगो रहता है 9999909259970 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको पता नहीं है उनके लिए बताता हूँ कि जहाँ पे 999 होता है तो उसका मतलब होता है 99.9% शुद्धता होती है इसकी, और कहीं पे 9990 जो होता है वहाँ पे 99% शुद्धता होती है। और दूसरे ग्रेड में आता है 970 जहाँ पे 97%, और जिसमें 97% तो वो चांदी होती है, 3% जो है दूसरी धातु का मिश्रण होता है, दूसरे जो है मेटल्स यूज किए जाते हैं। और एक होती है ग्रेड इसमें 95.8। सिमिलरली जैसे 95.8 हो जाता है 958 का, और 925 का 92.5 हो जाता है, और ऐसे ही 900 भी होता है जहाँ पे 90% शुद्धता होती है। और 80% का भी एक अलग सा बनते हैं कुछ गहने जो जिसमें 80% चांदी होती है और बाकी वाले 20% दूसरे धातु होते हैं। तो ये कभी कभी कोड जो है हमें कंफ्यूज करते हैं, कोई बोलता है मेरे पास एकदम प्योर चांदी, तो उसमें देखना होता है कि उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्या बात है। चलिए वक्त तो चला है 12:14 और 30 सेकंड, तो हम एड के साथ चलते हैं, फिर उसके उस तरफ हम चलते हैं गानों के साथ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले।
1: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLOకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
2: ఇరానీ చాయ్,
3: బన్ మస్కా,
2: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
3: టంగ్ ది కబాబ్,
2: కుర్బానీ కా మీఠా,
3: షహదూద్ మలాయ్,
2: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
3: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
2: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నె హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
3: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
2: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
3: it's culture, history and flavor rolled into one.
2: Jashne Hyderabad.
4: Mm-hmm.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो एड कलर्स टू योर लाइफ। वैसे हम गानों के जरिए, बातों के जरिए आपकी लाइफ में खूब सारा कलर भरने की पुरजोर कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें बहुत रंगीन नजर आए। पहले वैसे दोस्तों, हाउ मेनी यू थिंक मुझे ड्राइंग नहीं आती, सो आई एम नॉट क्रिएटिव। ये वाला चीज जो है मेरे साथ भी कई बार होता है और मेरे जैसे कई सारे दोस्तों के साथ ये वाली चीज होती है कि हमें ड्राइंग करना नहीं आता, हमें वो सब चीजें नहीं आती है तो हम क्रिएटिव नहीं है। तो भाई, क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, क्रिएटिविटी इज अबाउट एक्सप्रेशन। पेंटिंग हो सकती है वो, फोटोग्राफी हो सकती है वो, पोएट्री हो सकती है वो, म्यूजिक हो सकता है वो, कोई लिखना हो सकता है यानी राइटिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, इवन द वे यू डेकोरेट योर रूम वो भी क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आता है। आर्ट का मतलब सिर्फ एक परफेक्ट पेंटिंग बनाना नहीं होता, एक्चुअली वो हर एक चीज होती है जो आपको क्रिएटिव बनाती है। आपकी की हुई चीजों को जब कोई देखे तो कहे हाँ क्या ब्यूटीफुल है। हमने कई बार देखा है बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, उनको बहुत ही खूबसूरती से सजा कर रखा जाता है, वो भी एक पार्ट ऑफ अ क्रिएटिविटी है। और हमारे शहर में तो कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको आर्ट की क्लासेज जो है ली जाती है और आप वहाँ पर जाएँ या ना जाएँ वो आपका कॉल है। पर क्रिएटिविटी के लिए आपको किसी वर्कशॉप में जाना ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, आज से ही शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, एक पेपर लीजिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए या फिर अपने पार्टनर के साथ बैठिए और बस कुछ ड्रॉ कीजिए। इट डजेंट हैव टू बी दैट परफेक्ट कि भाई आपको इतना परफेक्ट होना है, नोबडी भी इज जजिंग यू। अभी ऐसा तो नहीं कोई आपको जज कर रहा है कि अरे अच्छा नहीं बनाया तो देखो आपके 10 में से 0 दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी इज द फियर ऑफ बींग जज्ड। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब में यही बड़ी दिक्कत है कि हम ये सोचते हैं कोई अगर हमारी किए हुए काम को देख लेगा, हमारे कला को देख लेगा और फिर हमें जज कर देगा, अरे तो ये तो गंदा है, तो वो हारने का डर है ना, हमें कुछ करने ही नहीं देता। और लोग क्या कहेंगे, भाई लोग जो कहेंगे कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस चलते रहना, फॉरगेट इट। और बस आज एक चीज जरूर करिए कि कुछ पेंट कीजिए या फिर कुछ गाइए, कुछ बनाइए या फिर कुछ लिखिए, बिकॉज क्रिएटिविटी मेक्स लाइफ मोर कलरफुल लाइक रेनबो। तो आप क्या करने वाले हैं मुझे जरूर मैसेज करके बताइए कि आपके पास आज कौन सी क्रिएटिव चीज है जो आज करने ही वाले हैं। किसी के बोलने से आप रुकने वाले नहीं हैं और किसी के डर से भी, ऐसा नहीं कि किसी का डर है और मैं ये चीज नहीं करूं, ये भी आप नहीं करने वाले। तो कॉल करके बताइए 0402324821। और हेलो रेनबो का सवाल कुछ और होगा, बाकी अभी एक काम कीजिए, आप मैसेज करके बता दीजिए इस चीज को कि आज क्या क्रिएटिव आप बनाने वाले हैं 0402324822। जी हाँ दोस्तों, तो आपके मैसेजेस का इंतजार है। अभी के लिए कमाल का गाना जावेद अली साहब की आवाज में एकदम तैयार है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, रेनबो ऐड कलर्स टू योर लाइफ। मैं हूं शरत आपके साथ और करूंगा आपसे अब बहुत सारी बात। वैसे बातें करना ही तो मेरा काम है। कल यानी कि 5 सितंबर को हमने इंडिया में सेलिब्रेट किया टीचर्स डे। जी हाँ दोस्तों, बट हियर इज अ थॉट, आई शुड बी थैंक आर टीचर ओनली वन डे। हर दिन हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें हम थैंक यू कहते हैं तो हर दिन वो जो एक कनेक्शन होता है वो बना रहता है। और हम जब स्कूल डेज में थे तब की बात है कि हम हमारे टीचर्स को बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ऐसे ज्ञान के रूप में जब वो हमें कुछ सिखाते तो हम सीखने की बहुत ज़्यादा पुरजोर कोशिश करते थे। होता था कि वक्त के साथ में कभी कभी चीज़ें नहीं सीख पाते थे, तो उसका अलग एक पनिशमेंट भी होता था बच्चों के साथ जो बदमाशी करते थे। वैसे टीचर एक टीचर ही जो है वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो एक टीचर नहीं होते, उनके अलावा भी हमारी लाइफ में कई बार अलग अलग रूप में टीचर आते हैं। आर पेरेंट्स आर आर फर्स्ट टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ सिखाते हैं वो भी हमारे टीचर बन जाते हैं। आर फर्स्ट बॉस जो हमें ये सिखाता है कि प्रोफेशनलिज्म कैसी होती है। जी हाँ, कभी कोई स्ट्रेंजर जो काइंडनेस सिखा कर हमें चला जाता है, हम उसे जानते भी नहीं, वो बस किसी बातचीत के दौरान वो हमसे मिलता है, वो उसकी जो काइंडनेस है वो हम सीखते हैं, वो भी एक टीचिंग के जरिए ही है। और समटाइम्स लाइफ इट्सेल्फ बिकम्स आर बिगेस्ट टीचर। हम सभी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर हमारी लाइफ में कोई

ना कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जो कभी ना कभी हमें ना कुछ सिखा के जरूर चला जाता है। सो आज एक चीज करते हैं, एक सिंपल सी चीज करते हैं कि आप अपने उस इंसान को थैंक यू बोलिए जिसने आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी सिखा है। आपके वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके वो टीचर जिन जिनसे आप सीखते हैं स्कूल में वो हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर वो मेंबर एक कोई छोटा सा बंदा भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। आप अपना वक्त निकालिए आज कुछ सेकंड्स का और उस इंसान को एक मैसेज कीजिए, थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से मैंने लाइफ में ये चीज सीखी है। यकीन मानिए दोस्तों, उसको जब ये मैसेज आप डिलीवर करेंगे, उसको जब ये मैसेज मिलेगा, उसके चेहरे की जो मुस्कान है, वो मुस्कान आप अगर आपको देखने का मौका मिल जाए ना, या फिर आप महसूस करने का मौका भी आपको मिल जाए, आपको इतनी खुशी होगी कि आप बोलोगे यार ये चीज तो कमाल की हो गई। और हाँ, एक चीज ये भी है कि आप अगर किसी से कुछ सीखते हैं, उसे अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने तक ही रोक के ना रखें, उस चीज को आगे पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बांटने से बढ़ता है। कई सारे ऐसे दोहे थे जब हम पढ़ाई करते थे, उन दिनों की बात है, तब एक दोहा था जो बहुत ज्यादा ये कनेक्ट करता है कि ज्ञान ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है, संजोने से उतना ही रह जाता है। तो आप ज्ञान जब आपको कुछ मिलता है, कोई आपको कुछ सिखाता है, अगर अच्छी चीज है तो आप भी उस चीज को आगे किसी को सिखाएं, जरूर सिखाएं। खैर, अभी के लिए मैं आपको लेके जाता हूं एक और प्यारे से गाने के साथ जो आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, और गाना कहता है खैरियत पूछो। यकीन दोस्तों, ये मेरा बहुत हमारे गाने जब मैं प्ले करता हूँ उसमें कभी कभी ये गाना आता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें इंसान को इंसान की खैरियत पूछने के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर हम किसी को जानते हैं और उससे बातचीत नहीं करते बहुत दिनों तक, उसके हालचाल नहीं पूछते हैं, अगर वो तकलीफ में है और हम उससे नहीं पूछे तो शायद तकलीफ बढ़ सकती है, और अगर तकलीफ में और हम उससे बस पूछते हैं कैसे हो तुम, तो यकीन मानिए दोस्तों, उसके चेहरे की मुस्कान, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा, वो अलग हो जाता है माहौल। तो इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को, फ्रॉम द फिल्म चिचोरा, आवाज अरिजीत सिंह साहब की, और गाना फिल्माया गया था सुशांत सिंह राजपूत पर।

0: FM Rainbow 101.9.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो एट कलर्स टू योर लाइफ। और अब वक्त हो गया है हमारे स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो रेनबो का। जी हाँ, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात हमारे जरिए सब तक पहुंचा सकते हैं। और होता यूं है कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं हेलो रेनबो में, और उसका जवाब आप अपने दिल की बात के जरिए, मतलब अपने जो मन में आपके बात आती है उस

में आप हम तक पहुंचाते हैं। उससे सबसे पहले जो सवाल है उसे पूछने से पहले मैं आपको नंबर बता दूं जो आप सेव कर लें। नंबर है 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715। और क्या है आज के मेरी हेलो रेनबो की बात जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, एक काम करता हूँ, एक गाने के साथ लेके चलता हूँ, जो वापस आएंगे तो करेंगे वो वाली बात जो आपके दिल तक पहुंचने ही वाली है। चलिए

0: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
1: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
0: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
0: Jashne Hyderabad.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। और आज है संडे का दिन। जी हाँ दोस्तों, संडे का दिन जो है सिर्फ रेस्ट करने का नहीं होता, अपनी जिंदगी को रीसेट करने का दिन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कल करूंगा। ये वर्ड्स कितना डेंजरस है आपको पता है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से काम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, बहुत से काम पोस्टपोन्ड होते होते फिर होते भी नहीं है। आज हेलो रेनबो में संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी ही बात की जाए जो आज के दिन को सेट हो जाए। और संडे का मतलब सिर्फ लेट उठना, मतलब आराम से खाना खाना या फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बैठना नहीं होता। संडे कैन बी आल्सो अ रीसेट बटन। जी हाँ, मैं आपसे आज एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वॉट इज दैट वन थिंग यू हैव बीन पोस्टपोनिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज। क्या वो जिम है, क्या वो रीडिंग है, या फिर फोन, किसी को फोन करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है पर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई नया काम है जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मैं इसको शुरू कर दूं पर वो शुरू नहीं हो पा रहा। हम सभी की लाइफ में एक सेंटेंस बहुत कॉमन है, यार कल कर लूंगा। तो ये जो कल है, ये कल ना हो के अगर आज हो, संडे का दिन है, अपने पास पूरा टाइम है, तो वो क्या होगा। और होता है ना कभी कभी दोस्तों कि हम ऐसे पोस्टपोन करते जाते हैं तो कभी चीज कल पर चली जाती है, कल से फिर कभी कभी वीक बन जाता है, फिर वो अगला महीना, फिर साल बन जाता है, और कभी कभी वो काम कैंसिल भी हो जाता है। तो बस दोस्तों, आज मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूं कि कौन सा एक काम है जो आप पिछले कई दिनों से या महीनों से पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो काम करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा वो काम है और उसे आज आप शुरू करेंगे क्या, या फिर एटलीस्ट आज उसकी शुरुआत कर दें, कुछ एक कदम आगे बढ़ाएं उस काम को करने के लिए। तो मुझे कॉल करें 0402323 0030, 0402323 4821, 0402970 4715। एक ऐसा काम जिसको आप पोस्टपोन कर रहे हो पर अगर पोस्टपोन नहीं करोगे, अगर आज ही उसे शुरू कर दोगे, तो यकीन मानिए वो काम आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आ सकता है। तो फटाक से फोन उठाइए, चटाक से मुझे कॉल कीजिए, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं 0402323 4822 पर भी। आपकी कॉल्स और मैसेजेस का इंतजार है। गाने एकदम तैयार है और अगला गाना है ये वाला।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 रेनबो एट कलर्स फॉर योर लाइफ। और मैंने एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा है कि संडे का दिन जो रीसेट करने का दिन है अपनी जिंदगी को, एंजॉय तो करते ही हैं संडे वाले दिन, पर मोर देन एंजॉय अगर हम इसे रीसेट करने की कोशिश करें संडे वाले दिन, हमारी चीजों को हम एक्टिव करने की कोशिश करें जो चीज हम मिस करते आ रहे हैं या पोस्टपोन करते आ रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, तो कितना कमाल का होगा ना। तो मेरा सवाल यही है कि आज ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप शुरू कर ही देना चाहते हैं, मतलब आज इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहते, कल पे नहीं छोड़ना चाहते, आज ही उसे शुरू करना चाहते हैं, तो क्या है वो, तो मुझे कॉल करके बताएं। अभी हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार भैया,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: शुभ मध्यान्हम, गुड
0: शुभ
1: आफ्टरनून।
0: मध्यानम आपको भी, गुड आफ्टरनून, बताइए।
1: रमेश,
0: हाँ
1: आप
0: रमेश,
1: आए थे और हम लोगों को बहुत बहुत खुशी खुशी हो जाती है। संडे का बात है, संडे का बात है, मेरा भैया का बात है, इस पर देखते हैं।
0: अच्छा, थैंक यू सो
1: आप
0: मच
1: आए थे
0: सर।
1: और जयश्री जयश्री मैडम आए थे भी बहुत खुशी हो जाती है।
0: अरे
1: बहुत
0: वाह,
1: अच्छा
0: क्या
1: है, आप
0: बात है, क्या बात है
1: और दोनों दोनों में बहुत पसंद है।
0: जी, थैंक यू, बहुत बहुत बहुत
1: अच्छा
0: शुक्रिया सर। बताइए सर, संडे वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप शुरू करना चाहते हैं, मतलब पिछली बार आप मिस कर गए या फिर।
1: मैं के रमेश बात कर रहा हूँ। मैंने संडे के दिन ही हम लोगों को जरा फुर्सत मिलता है, हमारे दुकान के अंदर पूरा चेक कर लेना पड़ता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जो भी देख लेना है वो पूरा देख लेके, जो ऑर्डर देना है वो ऑर्डर देना है सब पूरा मंडे लिख लेके, मंडे ट्यूजडे के दिन हम लोग ऑर्डर देते हैं ऐसा कर लीजिए। और
0: अच्छा
1: क्या संडे के दिन हमें बहुत खुश है, और क्या बोलते हो, मैं मन मन लो मन मन पिंचकोन एंजॉय करेंगे, चाय कोई ఒకసారి దాచుకొని ఇంకో సండే వాళ్ళు వస్తారు, లేకపోతే మెయిన్ అన్న పోయి వస్తాను ఎంజాయ్ చేస్తాను, నేను ప్రతిసారి నాకు అట్లా అనిపిస్తే చేసుకుంటాం అట్లా
0: వావ్ వండర్ఫుల్, అచ్చా హే సార్,
1: నాకు
0: క్యూంకి
1: నాకు నాకు నాకు నలుగురు మన్మందు ఒక మన్మదారు
0: ఓ
1: వాళ్ళు వస్తున్న చాలా ఫుల్ ఎంజాయ్ అనమాట,
0: క్యా బాత్ హే,
1: ఎవరు
0: వండర్ఫుల్,
1: ఏం ఇష్టం ఉందో నేను బయటకు వెళ్ళి చెప్పిస్తా, వాళ్ళనే తెప్పిస్తారు, ఎట్లా చేస్తా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసుకో, సండే మాత్రం ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం,
0: ఈ సార్
1: లేకపోతే
0: వచ్చినారు వాళ్ళు
1: ఫ్రెండ్స్
0: సార్,
1: తో కూడా ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం, అట్లా కాకుండా కొంచెం ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాము అట్లా కూడా ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం।
0: क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आए आपके फिर वो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, संडे
1: आए साहब, आए आए आए, खेल
0: है। थैंक
1: रहे हो
0: यू,
1: लोग, बात खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हो लोग,
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू। दोस्तों ये रमेश जी हैं जो बता रहे हैं।

कि इनकी शॉप है, और संडे का दिन आता है तो ये उस जो साफ सफाई का काम होता है, जो क्योंकि ग्रोसरी स्टोर है तो वहां पे वो काफी सारे आइटम जो एक्सपायर होने के चांसेस रहते हैं, तो वो आइटम सब वो बाहर निकाल देते हैं और हर संडे ये करते हैं। पिछले संडे इन्होंने नहीं किया था, उन्होंने बोला कि मिस कर दिया, इसलिए बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन था पूरे हफ्ते भरी, पर इस संडे इन्होंने वापस अपने टास्क को पूरा किया। ऐसे आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है आपकी लाइफ की जिसे आप रीसेट कर देना चाहते हैं इस संडे, और कैसे करेंगे उसे, ये भी मेरे को बताइएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715, इन तीन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 0402323-4822, इस पर जितने चाहें उतने मैसेजेस आप भेज सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक प्यारे से गाने के साथ, गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में, और गाना कहता है

0: మరిన్ని వివరాల కోసం జిల్లా స్థాయిలోని డిఐసి కార్యాలయాలను మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలోని తెలంగాణ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ డీజీఎఫ్పిఎస్ ను సంప్రదించగలరు.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. मैं हूं श्रत आपके साथ और मैंने पूछा है कि संडे का दिन जब आता है तो एंजॉयमेंट के साथ साथ में ऐसे कौन से पेंडिंग टास्क है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं. बहुत संडेज से ट्राई कर रहे पर नहीं हो रहा. कुछ दोस्तों ने कहा कि उनके तो कंप्लीट हो गए, तो आप मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा टास्क है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं. एक दोस्त है हमारे, नाम है उनका अजय, उनका मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से एक डॉक्यूमेंट था जो वो कंप्लीट करना सेट बनाना चाह रहे थे. उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करने थे. हर संडे करने का सोचते, कभी एक डॉक्यूमेंट कम होता, थोड़ा सा ऐड करते, फिर भूल जाते. आज इन्होंने कसम खाली सुबह उठते कि ये काम करेंगे तो करेंगे, और फाइनली सुबह से स्टार्ट हुए तो अब 1:40 के आसपास इनका मैसेज इन्होंने सुना और उन्होंने मैसेज करके बोला कि हाँ मेरा ये काम ये था और मैंने कंप्लीट कर दिखाया. इतनी खुशी हो रही है उनको इस चीज़ की जबकि काम उन्हीं का था. वैसे दोस्तों यही होती है कि जब आप कोई भी टास्क अगर आप सोचते हो कि उसे कंप्लीट करना है और कंप्लीट कर देते हो तो फिर आपके चेहरे की मुस्कान नेक्स्ट लेवल. एक और मैसेज है यहाँ पे, इनका नाम है, इन्होंने नहीं लिखा, पर ये कहते हैं कि पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई और लोग भटक रहे हैं. मतलब सरकास्टिक था इनका, पर कहीं ना कहीं कुछ दिल को लगने वाली बात कही. आजकल धीरे धीरे जैसे भाग रही है दुनिया, वैसे ऐसा फील होता है कि किसी को किसी से ज्यादा इतना मतलब नहीं है. वो अपनी जिंदगी में खुश है और आसपास क्या चल रहा है उन्हें कोई कंसर्न नहीं रहता. पर पहले एक दौर था कि आपके पड़ोस में कुछ होता था, थोड़ी सी भी किसी को तकलीफ होती तो सब लोग इकट्ठा होकर वो तकलीफ को दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश करते थे. पर आजकल जी हाँ, फास्ट वर्ल्ड है तो अपने हिसाब से चलता है. खैर इसी के साथ साथ एक दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जरा उनके दिल की जानते हैं. हेलो. हेलो.
2: नमस्ते सर.
1: नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं?
2: नरसिम्हा रेड्डी सर. सुरेश जी.
1: हाँ नरसिम्हा रेड्डी जी, कैसे हैं सर आप?
2: एकदम बढ़िया हूँ सर. आप कैसे सर?
1: सब हम बढ़िया हैं सर. बताइए कि संडे वाला दिन आज है तो कौन सा ऐसा काम है जो इतने दिन से पूरा नहीं कर पा रहे थे, आज टाइम मिल गया आपको, आप कर देने का सोच रहे हैं?
2: हाँ तो रोज ऐसे ही बोला, तो आज कल करूंगा बोल के आज शाम में 3 घंटा टाइम लेके अपने दुकान में जो है ना, सब शॉप में है और उधर उधर का सामान पड़ा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा क्या चीज है बोल के. जरा
1: अच्छा
2: आज उधर करके जरा निकाल के क्या चीज क्या है, वो क्या है बोल के तेरा जमा के साफ सफाई करके. वैसा भी सर गणेश चतुर्थी भी आ रहा ना सर.
1: हाँ हाँ यस जी हाँ.
2: उससे पहले जरा दुकान के अंदर जरा
1: साफ सफाई करना.
2: हाँ जी जी जी.
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विचार है आपका. आपकी वजह से कुछ देर पहले हमारे रमेश जी भी एक हैं, उनका भी ग्रोसरी स्टोर है, शॉप है, तो वो भी यही कह रहे थे कि साफ सफाई करते हैं तो समझ में आता है कि हमको चीज कहाँ रखी हुई, और इजी होता है कोई कस्टमर आता है जब उन्हें देने के लिए.
2: बिल्कुल बिल्कुल साहब, काहे को बोलता है रखे भूल गए कभी कभी कभी, मतलब संडे बोल के ऐसा जो भी अपने को टाइम मिला ना साहब
1: कर लेना चाहिए.
2: टाइम में चेक कर लिए तो अपने किधर क्या है बोलते मालूम पड़ता.
1: सही है, एकदम सही बात
2: करना भी जरूरी है साहब.
1: जरूरी है, पोस्टपोन नहीं करें किसी भी काम को जितने
2: में होता साहब. इंसान क्या है भाई, ठीक है भाई कल करेंगे ना.
1: ये होता है, आप जो बोले ना ठीक है भाई कल करेंगे, ये आप अकेले नहीं बोल रहे, ऐसा पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं कि अरे यार अब चलो कल करेंगे ना, बोलते फिर वो कल जो है वो कल कभी नहीं आता, वो कल परसों में बदल जाता.
2: हर कोई सोचता साहब क्या बोल के नहीं पेंडिंग में रखना बोल के, क्या की समझ में ना आता ऐसा आ जाता साहब वो.
1: पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आज अपन खुद से करेंगे. जैसे आप आज बोले संडे करेंगे तो आपको सुन के
2: कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करेंगे.
1: स्टार्ट कर लेना, मेरा ये कहना है कि आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए कोई भी काम अगर आप करना चाहें.
2: शुरू जो होती ना साहब.
1: हाँ
2: शुरू जो करे तो फिर आज के बाद में रास्ता अपने आप को गिर जाता.
1: अब ऐसा ही सोच के करना है कि 10 मिनट ही करता हूँ बोल के, फिर ऑटोमेटिकली मन उसमें लगता रहता है और फिर वो काम कम्प्लीट हो जाता है.
2: शुरू ही ना करे तो रास्ता कहाँ से मिलता साहब.
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नरसिम्हा जी कॉल करने के लिए साहब.
2: थैंक यू सर.
1: दोस्तों ये थे नरसिम्हा रेड्डी जी जो बता रहे थे कि आज इनकी भी शॉप है तो ये कई दिन से सोच रहे कि यहाँ साफ सफाई कर दूं, ये चीजें सेट कर दूं, पर नहीं हो रहा, पर आज 3 घंटे निकाल के पक्का वो काम करने वाले हैं. ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जो आप करने वाले हैं मुझे तुरंत से बताएं क्योंकि वक्त थोड़ा सा ही बचा है. अभी के लिए मैं आपको लेके जाता हूं एक और प्यारे से गाने के साथ. गाना कहता है, क्या कहता है गाना, कहता है कुछ कमाल का, पर उससे पहले एक एड, एड के बाद वो गाना.
3: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: दोस्तों वक्त हो चला है 1:55 और 49 सेकंड। तो मेरे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं, तुरंत से उनसे बात करते हैं, फिर यहाँ से रुख्सत लेने का वक्त हो जाएगा। हेलो,
1: हरिओम,
0: हरिओम सर
1: मैं विलास तेंदुलकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी, बताइए सर, कौन सा ऐसा टास्क है जो आप संडे वाले दिन आज कंप्लीट कर देना चाहते हैं, बहुत दिनों से पोस्टपोन्ड हो रहा है।
1: हाँ जी, ऐसे तो जिस दिन का काम जिस समय का काम उस समय करना मेरी आदत है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से ऐसा हो रहा था कि प्रतिदिन मैं 108 गायत्री मंत्र के जप करता हूँ।
0: ओहो
1: एक
0: ग्रेट।
1: माला जिसमें 108 वो होते हैं तो उसमें जप करता हूँ मैं, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि 1008 मुझे करने हैं,
0: ओके,
1: तो
0: क्या
1: वो आज मैंने कर दिया है।
0: बात है, वाह।
1: गायत्री मंत्र का जप करना, एक माला तो वैसे हो जाती है, लेकिन मन में आया था कि 1008 करेंगे, तो
0: वाह,
1: वो आज रविवार था तो सवेरे सवेरे मैंने सोच लिया कि भाई आज हमको ये काम करना है, तो आज मैंने वो काम कर लिया।
0: ग्रेट
1: उसके
0: सर,
1: पश्चात भगवान

0: नैवेद्य चढ़ा करके अभी भोजन भी हो गया है।
1: बहुत बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बस थैंक यू सो मच विलास जी, समय थोड़ा
0: आपने मुझे
1: अभाव
0: अवसर
1: है।
0: दिया।
1: थैंक यू
0: हाँ
1: सर,
0: जी ठीक है,
1: थैंक यू। दोस्तों ये थे विलास जी जो बता रहे थे कि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि गायत्री मंत्र 108 बार तो हमेशा ही करते हैं, पर 1008 का इनका एक लक्ष्य था जो इन्होंने आज कंप्लीट किया और बहुत इनको बहुत खुशी हुई। तो सोचिए दोस्तों कि जब आप किसी टास्क को करना चाहते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं वो खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पोस्टपोन ना करें किसी भी काम को, अगर आपको आज ही कुछ करना है तो अब से शुरू कर दें। हो सकता है कि बड़ा टास्क हो तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट बांट के आप उसे कंप्लीट करें, पर टास्क कंप्लीट करें। संडे एक अच्छा दिन है जहां से आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ इस दिन आपको सोचने का अच्छा वक्त मिलता है, क्योंकि आप डेली ऑफिस लाइफ में आप वो चीजें नहीं सोच पाते, कर नहीं पाते। संडे वाले दिन आपके पास इनफ टाइम होता है रीसेट बटन को दबाने का। तो बस यही आज का टॉपिक था। अभी वक्त हो गया है 1:57, दैट मीन्स कि मुझे यहां से लेनी होगी रुख्सत। इसी वादे के साथ मैं जाता हूं कि मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी हफ्ते, आपके अपने आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर। हमारे शोज, हमारी बातें ऐसे ही चलती रहती है, हर दिन चलती रहती है। हर दिन हम तरह तरह की चीजें, तरह तरह की ब्यूटीफुल चीजें आपके लिए लेके आते हैं। हर हर होस्ट जो है आपको एंटरटेन करना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करता रहता है। आपका प्यार यूं ही हमारे ऊपर बरकरार रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। जाते जाते एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अपनों का ख्याल रखने में जो मजा है वो मजा और कहाँ है। यकीन मानिए दिल को बहुत बहुत सुकून मिलता है जब हम अपनों का ख्याल रखते हैं।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Malayalam, where Telangana lives on radio.
1: FM Rainbow 101.9.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

आज की इस बज्म में शामिल है प्रोग्राम्स की तफसील कुछ इस तरह से है। बज्म के आगाज पर पेश किया जाएगा हरफे ताबिंदा। सुरेले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा, जिसमें हम आपको सुनाएंगे फिल्मी गीत और साथ ही हम बात करेंगे गिजा और शिफा उन्मान पर। और इस तरह बज्म के इख्तिताम पर हम आपको सुनाएंगे पयाम शब। तो आइए सामीन, हसब दस्तूर बज्म का आगाज करते हैं हरफे ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है फहमिदा फहमोश की। दिल साफ हो तो मंजिल मकसूद दूर नहीं, सजदों में गर खुलूस नहीं तो शऊर नहीं। वो बेनियाज सुनता है खामोशियां भी, वो बेनियाज सुनता है खामोशियां भी, जिसमें दिखावा हो वो दुआ मंजूर नहीं। रियाकारी एक ऐसी अखलाकी बीमारी है जिसमें इंसान नेक काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि लोगों में वाह वाह समेटने और अपनी पारसाई का सिक्का जमाने के लिए करता है। ये अमल ऊपर से जितना खूबसूरत नजर आता है अंदर से उतना ही खोखला होता है। जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खत्म कर देती है, इसी तरह रियाकारी इंसान के तमाम नेक आमाल को बर्बाद कर देती है। बकौल शायर, तेरी नमाज में बाकी जलाल वो मस्ती नहीं, तेरी नमाज में बाकी जलाल वो मस्ती नहीं, कि तेरी रूह में अब वो पुरानी बस्ती नहीं। दिखावे की नीयत से की गई इबादत कबूल नहीं होती। जब मुआशरे में रियाकारी बढ़ती है तो लोग खुलूस दिल से काम करने वाले लोगों पर भी शक करने लगते हैं और एतिमाद खत्म होने लगता है। रियाकार इंसान हमेशा जहनी बेसुकून का शिकार रहता है। रियाकार शख्स हमेशा इस फिक्र में रहता है कि लोग इसे क्या समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हकीकी इत्मीनान से महरूम रहता है। सच्ची नेकी वो है जो खामोशी से की जाए, जहां दाहिने हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को खबर ना हो। मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है कि हम अपने आमाल का जायजा लें और दिखावे की जगह खुलूस नीयत को अपनाएं। खुलूस दिल से जो सजदा हो वही बंदगी है, वरना सजदों की नुमाइश तो फकत गंदगी है। तलाश लेनी है तो अपनी नीयतों के लिए, तलाश लेनी है तो अपनी नीयतों के लिए, कि तेरे जाहिर से बेहतर तेरी बातिनी जिंदगी है। रियाकारी सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि इंसानी रवैयों में भी पाई जाती है। जो लोग दिखावे के लिए अमल करते हैं उनके आमाल अकारत हो जाते हैं। जब मुआशरे में सच्चाई की जगह रियाकारी ले लेती है तो इखलास मिट जाता है और मुंह पर कुछ पीठ पीछे कुछ का चलन आम हो जाता है। रियाकार शख्स की चंद अलामतें, जैसे कि जब बात करे तो वो हमेशा झूठ ही बोलता है, जब वादा करें तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करता है। बकौल शायर, हर तरफ जबर है धोखा है रियाकारी है, हर तरफ जबर है धोखा है रियाकारी है, अब जिधर देखिए झूठों की पुरस्तारी है। रियाकारी का जहर पीने के बाद इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, जिसका जाहिर ताबनाक लेकिन बातिन तारीख होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चेहरे बदल बदल के मिले हैं सभी यहाँ, चेहरे बदल बदल के मिले हैं सभी यहाँ, अब आईना भी हमसे रियाकारी कर गया। आज के दौर में नेकी अब खुफिया नहीं रही, किसी गरीब को खाना खिलाना हो या कोई किसी की मदद करना हो, ये सब चीजें सबसे पहले कैमरे का रुख करती हैं। इस सूरत हाल पर ये शेर सादिक आता है, नेकी कर कर के दरिया में डालने का जमाना गया, नेकी कर कर के दरिया में डाल

0: डालने का जमाना गया, अब तो नेकी करके कैमरे में डालना पड़ता है। हकीकी कामयाबी जाहिरी नुमाइश में नहीं बल्कि बातिनी पाकीजगी में छुपी हुई है। हमें चाहिए कि हम अपने आमाल की बुनियाद लोग क्या कहेंगे के बजाय मेरा रब क्या कहेगा पर रखे। इसी दिन से हम रियाकारी के फितने से निजात पा सकेंगे। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन।
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर SG विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
0: समीन अभी आपने समाप्त किया हरफे ताबंदा। जी हाँ बिल्कुल, हमें कोई भी अमल करना है तो उसमें रियाकारी से बचना है। आइए बज्म को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। और साथ ही हम बात करेंगे जैसे कि समीन ये जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो मनाया जाता है उसके तहत हम बात करेंगे गिजा और शिफा उन्वान पर। गिजा जो हम रोजाना खाते हैं उसी में शिफा है। जी हाँ, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जिंदा रहने और काम करने के लिए हर इंसान को गिजा की जरूरत होती है। अच्छी और साफ सुथरी गिजा खाने से हमारा जिस्म ताकतवर बनता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी गिजा ही सबसे बेहतरीन दवा है। जब हम ताजा फल सब्जियां दालें और दूध इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म को जो ताकत मिलती है यही वो ताकत है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में मदद देती है। अगर हम कभी बीमार हो भी जाएं तो अच्छी गिजा की वजह से हमारा जिस्म जल्दी ठीक हो जाता है। इस तरह गिजा हमारे लिए शिफा का जरिया बनती है। समय बज़्म में होगी और भी बातें, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में जो कि लिया गया है फिल्म करण अर्जुन से।

दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग़िज़ा के उन्वान पर, तो आज इतवार का दिन भी है। तो ये जो इतवार है ना, पुराने दिनों में यानी कि गुजरे हुए माजी के दौर में, पुराने वक्तों में इतवार का जो दिन होता था, उस दिन की जो सरगर्मियाँ होती थी वो सादा दिनों से मुख्तलिफ होती थी, यानी आम दिनों से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि सबसे अहम बात ये थी कि सब लोग मिलकर काम करते थे और मिलकर खाते थे, या फिर यूं समझे कि सब मिलकर नाश्ता करना, दोपहर का खास खाना, सबकी मदद, सहन में बैठकर, दस्तरखान में बैठकर खाना, शाम की चाय और गपशप। जी हाँ, ये सब जो चीजें होती थी वो आजकल के जो इतवार है उसमें हमको नहीं मिलती है। जी हाँ, इतवार की सुबह सब देर से उठते और घर के जो है मर्द बाजार से गर्मा गर्म पूरी चने या फिर नहारी लेकर आते, जिसे पूरा खानदान एक साथ बैठकर खाता था। अब दोपहर के जो खास खाने की बात होगी तो सामीन, आम दिनों में जो है दाल सब्जी बनती थी, लेकिन जो इतवार होता था ना उसमें बिरयानी, वाह, बिरयानी का मजा ही कुछ और होता था, और सबके साथ बैठकर खाना उस पे सोने पे सुहागा हो जाता था। इसके अलावा घर के काम में बच्चे और बड़े सब एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे, जैसे सब्जियां ला देना, दही लाना।

वगैरह वगैरह, इस तरह जो घर के काम काज होते थे वो किसी एक पर नहीं पड़ते थे। फिर जो दोपहर का खाना बनकर जब तैयार हो जाता था तो सब लोग एक साथ बैठकर जो मोहब्बत होती थी उसको जो है ना उस आंगन में, उस सहन में देखा जाता था। इसके साथ साथ जब शाम होती थी तो शाम की चाय के साथ पकोड़े या समोसे होते थे और घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को पुरानी कहानियाँ सुनाते थे। जी हाँ बिल्कुल समयन, आज के जो मतलब मसरूफ़ तरीन जो दिन हो गए हैं उसमें हमको ये चीज़ें देखने बहुत कम ही मिलती हैं। तो दोस्तों हम और भी ऐसे ही मज़ेदार बातें आपसे जो है ना बताएंगे। आइए सुनते हैं अगला गीत कुमार सानू की आवाज में, जिसके बोल है देखा तुझे तो, और ये लिया गया है फिल्म कोयला से।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।

दोस्तों, स्टूडियोज की घड़ी में 10:02 और 30 सेकंड्स हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, जिसमें गीत सुरीले गाता जा आप सुन रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं ग़िज़ा और शिफा उन्वान पर। जी हाँ, तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए ग़िज़ा की अहमियत बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए ग़िज़ाइत से भरपूर खाना बेहद ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा इंसान के क़ुव्वत को, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत होता है यानी इम्यून सिस्टम होता है, उसको मज़बूत करती है, जिससे जिस्म शुगर, दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रहता है। सेहतबख्श ग़िज़ा ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग को भी तेज़ करती है। इससे इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत और याददाश्त बेहतर होती है। मतवाजन खुराक खाने से इंसान का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ता और ना ही वो सुस्ती का शिकार होता है। दूसरी तरफ, बाजारी खाने, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे सेहत को ख़राब करते हैं। ऐसी चीज़ें खाने से इंसान मोटा और बीमार हो जाता है। अगर हम इन नुकसानदार चीज़ों से बचें और सादा खाना खाएं, तो हम बहुत सी बीमारियों और महंगी दवाओं से बच सकते हैं। तंदुरुस्ती का बस यही है राज, तंदुरुस्ती का है बस यही राज, सेहत बख्श ग़िज़ा का हो आज से आगाज। खाओगे अगर ताज़ा फल, बदल जाएगा तुम्हारा कल। जी हाँ, तो दोस्तों, आप उम्मीद करती हूँ कि जो फास्ट फूड है और जो बाजारी खाने हैं, उनसे बचेंगे और अपनी जो सेहत है उसको बरकरार रखेंगे। और भी हम बज़्म में बातें करेंगे, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, जिसके बोल है, पालकी में होके सवार चली रे।

0: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
1: स्टूडियोज की घड़ी में 10:21 और 3 सेकंड हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू का नैरंग प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, जैसे अच्छी ग़िज़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, उसके नुकसान भी होते हैं। जब हम घर का बना हुआ सादा खाना, ताज़ा फल, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडे और दालें खाते हैं तो हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। ये ताकत हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली एक फौज तैयार करती है। जब भी कोई जरासीम या बीमारी हमारे जिस्म पर हमला करते हैं तो ये ताकतवर फौज उसका मुकाबला करती है और हमें बीमार नहीं होने देती।

अगर हम कभी बीमार भी हो जाए तो ये गिजा जो है हमारे जिस्म को जल्दी ठीक कर देती है, इसी को शिफा कहते हैं। इसके खिलाफ अगर हम गलत गिजा खाते हैं तो उसके नुकसानात भी हमको उठाना पड़ता है। जैसे कि आजकल लोग घर के सीधे सादे खाने के बजाय बाजारी खाने, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये चीजें जुबान को तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे जिस्म को अंदर से कमजोर कर देती हैं। ऐसी गिजा मुसलसल खाने से इंसान मोटापा, शुगर, दिल के अमराज और पेट के अमराज में मुब्तला हो जाता है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम बाजारी और गंदी चीजों से दूर रहें। अब समय शिफा बख्श गिजाएं हैं क्या? जी हाँ, हम आपको बताते चले कि जो है शहद, खजूर और जैतून और कलौंजी। जी हाँ, शहद जो है हमें हर बीमारी के लिए बेहतरीन शिफा है। इसी के साथ साथ खजूर और जैतून ये भी हमारे जिस्म को फौरी ताकत देते हैं और दिल को मजबूत करते हैं। कलौंजी कलौंजी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद गिजा है। इसमें हर बीमारी का इलाज है। कहावत है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर हम एक खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने खाने पीने की आदत जो है उसको सुधारना होगा। हमें हमेशा भूख रखकर खाना चाहिए, वक्त पर खाना चाहिए और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। महंगी दवाओं पर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि हम अच्छी और मुतवाजन गिजा खाएं, क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है और अच्छी गिजा ही असल शिफा है। बज्म में होगी और भी बातें, आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो कि लिया गया है फिल्म सड़क से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। वाह क्या बात है, अभी आपने जो गीत सुना है वो लिया गया था फिल्म मोहरा से। जी हाँ, उर्दू अल्फाज का जो इंतखाब इन पुराने गीतों में मिलता है वो आजकल कम ही सुनने को मिलता है। मौसीकी और जज्बात का जो संगम होता है जिसकी वजह से ये गीत एवरग्रीन होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं गिज़ा शिफा। जी हाँ, गिज़ा जो है वो शिफा कैसे बनती है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर उसे दवा के साथ साथ हल्की और अच्छी गिज़ा जैसे खिचड़ी, दलिया या सूप का मशवरा देते हैं। इसकी वजह यह है कि दवा सिर्फ बीमारी को रोकती है लेकिन जिस्म को दोबारा ताकतवर बनाना और बीमारी के असरात को ख़त्म करना गिज़ा का काम होता है। जो लोग बाकायदगी से अच्छी और सादा गिज़ा खाते हैं उनका जिस्म अंदर से इतना मजबूत होता है कि छोटी मोटी बीमारियां उनके करीब भी नहीं आती। अगर हम मौजूदा दौर के मसाइल और गैर सेहतमंद बख्श गिज़ा के बारे में अगर बात करें तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो घर की रोटी और सब्जी के बजाय बाजारी चटपटी चीज़ें, पैकेट वाले चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर और केमिकल वाले जूसेस की दीवानी है। इन चीज़ों में कोई ताकत नहीं होती बल्कि ये जिस्म के अंदर जाकर खून को गंदा करती है और मैदे को ख़राब करती है। आजकल जो कम उम्र बच्चों में नज़र की कमजोरी, सुस्ती और हड्डियों का दर्द देखा जा रहा है उसकी बड़ी वजह यही गलत ग़िज़ा है। गर्ज़ ये कि जो है ग़िज़ा और शिफा का जो रिश्ता है जिस्म और रूह जैसा है। हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। हमें चाहिए कि हम बाजारी खानों से बचें, घर के साफ सुथरे खाने की आदत डालें और खाने से पहले हाथ धो लें। इस बात पर मुझे ये शेर याद आ गया, अगर जीना है एक अच्छा कल तो आज ही खाओ ताजा फल। छोड़ो ये बाजारी खाना, सेहत का तुम सीखो फसाना। जान है तो फिर जहां है, सेहत ही असल मुस्कान है। दोस्तों इस मौजू पर हम और भी बातें करेंगे। आइए सुनते हैं फिल्म आशिकी से लिया हुआ ये गीत जो अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में है और गीत के बोल है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।

दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग़िज़ा और शिफा में, जी हाँ, अल्लाह ताला ने हर जो बीमारी है उसका इलाज ग़िज़ा में ही छुपा रखा है। अगर हम सही वक्त पर सही खाना खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि ग़िज़ा ही दवा है। जी हाँ, दही हमारा जो मैदा है उसको उसके लिए एक बेहतरीन शिफा है। ये हाजमे को ठीक करता है और पेट की गर्मी को दूर करता है। इसके साथ साथ इसबगल का छिलका, ये कब्ज़ और पेट दर्द को जो है दूर करने, दोनों ही सूरतों में आराम देता है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी होने की सूरत में शहद का इस्तेमाल करें। जी हाँ, शहद गले की खराबी और खांसी के लिए एक कुदरती शिफा है। गर्म पानी या कहवे में शहद मिलाकर पीने से फौरी आराम मिलता है। इसके साथ साथ अदरक और लहसुन, ये जिस्म को अंदर से गर्म रखते हैं और नज़ला ज़ुकाम के जरासीम को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा कमज़ोरी और खून की कमी के लिए हमें खजूर और पालक, हरी सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर खाने से जिस्म को फौरी ताकत मिलती है और ये जिस्म में नया खून बनाते हैं। पालक और हरी सब्जियां, इनमें आयरन ज़्यादा होता है जो चेहरे की जर्दी को दूर करता है और ताकत देता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। हल्दी में जो है, हल्दी वाला दूध जो है वो हमारे लिए दर्द को ठीक करने की कुदरती ताकत रखता है। चोट लगने या जिस्म में दर्द होने पर हल्दी वाला दूध पीना बेहतरीन शिफा है। बात सीधी है, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है और अच्छी सेहत का रास्ता हमारे बावर्ची खाने से निकलता है। महंगी दवाओं और डॉक्टरों की फीसों पर पैसे बर्बाद करने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि हम अच्छा, सादा और साफ सुथरा खाना खाएं। जब हमारा खाना अच्छा होगा तो हमें शिफा भी मिलेगी और हम एक लंबी और हंसती खेलती जिंदगी गुजार सकेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे यूं ही बने रहेंगे। आइए सुनते हैं अगला गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: समय ना आप समाप्त कर रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा।
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
2: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चाला ना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां न को भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार नश्र किए जाएंगे।

0: नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर

0: जाने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
3: We have prepared a roadmap to make India drug-free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on 4 key pillars. First, intelligence and operations-based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity building.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we will be taking calls from you, our listeners, on your mutual fund related queries. But do remember, listeners, that we do not address fund specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Karjor Abhinandan, Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Shrotaon, aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke tamam sawalon ke jawab dene ki koshish karenge. Sawal poochne ke liye aap in numbers par hame phone kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, आपके सवाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne Bharat ke yuvaon se duniya ka netritva karne wali vaishvik star ki consulting, accounting, vittiya aur kanuni companiyan banane ka ahvan kiya.

0: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
1: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Over to you, Prachi.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। और इसी बीच अनुभव दिल्ली से हमारे साथ भुवन जुड़ रहे हैं। भुवन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी, भुवन अलखा बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। मार्केट मंत्रा की टीम को और एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरा प्रश्न ये है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन होता है, तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन खराब नहीं जाए?
3: जी, इस चीज की जानकारी मेरे को अभी नहीं होगी। आप अगले सप्ताह कॉल करिएगा, इसकी जानकारी आपको मैं तब दे पाऊंगा।
1: सो लाइक आवर एक्सपर्ट इज सेइंग, प्लीज डू कॉल अस विद द सेम क्वेरी नेक्स्ट वीक एंड वी विल बी होपफुली विल हैव द आंसर फॉर यू। आवर एक्सपर्ट विल हैव दैट आंसर फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs वर नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन द फर्स्ट 4 days ऑफ सेप्टेम्बर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिपॉजिटरी डेटा, FPIs हैव पुल्ड आउट 7,443 crore रुपीज फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट टिल नाउ इन सेप्टेम्बर। Of the total net outflow, 8,403 crore rupees were withdrawn through selling on stock exchanges, while 960 crore rupees was invested through the primary market. Despite robust domestic GDP data, healthy GST collections, record high forex reserves, and a stable currency, FPIs persisted as net sellers in domestic equities. However, in August, FPIs infused 29,631 crore rupees into Indian equities. Meanwhile, the debt market has witnessed mixed trends in foreign portfolio investors' flows. So far in September, FPIs have infused 217 crore rupees in debt securities through the general limit route. In contrast, the voluntary retention route VRR has recorded outflows of 231 crore rupees, while the fully accessible route or the FAR experienced net divestments of 377 crore rupees during the period under review. And before we go on to the next story, Akar, I have a question for you. You know, many a times when one starts investing into mutual funds, there's always this confusion as to which type of funds one should be, you know, investing it to begin with. Mm-hmm. So how can an investor decide between the various types of mutual funds, equity, debt, hybrid, or other categories? So how to go about it?
3: So as you just mentioned that, there are several types of mutual funds. Even within the asset classes like equities, there are multiple categories. We have a large cap fund, we have a mid cap fund, we have a small cap fund. And if we move to hybrid, there are 7 different types of hybrid funds. One is the aggressive hybrid, one is a balanced advantage. And then we also have arbitrage equity savings funds. And even in the debt funds, there are several types of categories. So to answer your question, the first requirement should be to ask yourself before investing that, when would you need this money? What's the horizon that you want to invest it for? And then the second thing would be, what's the purpose? Is the goal negotiable or not? When I say negotiable, it basically means that, are you comfortable and are you flexible

0: with a horizon. For example, you know, if you plan to invest it for 5 years, so would you mind that, you know, if that shifts to 6 years? Once you have these questions, it will help you decide on the asset allocation straight away. So, you know, I mean, for newcomers, if you have a horizon of, you know, more than 5 years, that is the time only when you should be investing in equities. And if your horizon is like, you know, 1 or 2 years, you should not be going towards equities or even a hybrid fund for such a short period. You should stick with debt funds. So once you have the answer of the asset class, then you should, you know, go deeper into the different kind of funds. For example, if, you know, we are talking about equities, then all the categories, they have different risk and reward ratios. So large cap is something, you know, which is, which carries the least risk among the equity categories and is the least volatile, because large cap funds invest at least 80% of the portfolio in the top 100 companies, the stocks of the top 100 companies. At the same time, if we look at the small cap funds, they are comparatively much more riskier. They do return, they do give you higher returns, but they are more volatile. So here comes that part, you know, even once you've decided the asset class, you are into equities, then what's your horizon? So if it is like just 5 years, four, 5 years, it's better you stick with, you know, less risky equity funds like large cap funds, or maybe a diversified fund if your horizon is like 6-7 years, a flexi cap fund, which invests the money across large cap stocks, mid cap stocks and small cap stocks. And if you have a higher horizon, maybe 10, 15 years, at least 8 to 10 years, and you have that risk appetite as well, then you can look at mid cap and small cap funds. So just to conclude, one is that, you know, you should be sure of when would you need this money, what's the investment horizon, and then the purpose, whether it is negotiable, the flexibility of timing. So all these questions, along with your risk appetite, they help you decide the asset class first and then the exact fund category.
1: यानी कि हम जब निवेश करें तो उससे पहले ये सोचें, समझें कि हमें किस वक्त तक चाहिए हमारा पैसा और कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं और क्या और कितना रिस्क हम बियर कर सकते हैं इस दौरान में. श्रोताओं, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो बेधड़क पूछिए. इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर आकार रस्तोगी हमारे साथ हमारे समक्ष बैठे हैं. आकार, अगर कोई जो फंड है वो अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कुछ समय से, तो हाई एक्सपेंस रेशियो के जस्टिफाई होता है?
0: देखिए, जो आपके रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो आपके एक्सपेंस रेशियोज को कंसिडर करने के बाद ही आते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका एनएवी में एडजस्ट होता है, एंड रिटर्न्स आपका यूजली यूजली वो एनएवी के बेसिस पे ही होता है. एक्सपेंस रेशियोज के लिए रेगुलेटर ने, सेबी ने कुछ मैक्सिमम सीलिंग्स लगा रखी है, एंड एज फार एज अगर वो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है प्लस बाकी पोर्टफोलियो ठीक है एंड ऑल थिंग्स गोस, तो देयर इज नो हार्म इन इट. बट साथ ही में मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय से, बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जो रीसेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. कोई सा फंड ऐसा होता है अगर आप देखेंगे कि अच्छा अभी पिछले 6 महीने में ये एकदम नंबर वन पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, या पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और यहीं पे बहुत ज़्यादा निवेशक गलती करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, एकदम हम लोग आसपास के पिछले 6 महीने के, पिछले 3 महीने के, 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं और जो टॉप पे होते हैं हम लोग सीधा उसमें निवेश कर देते हैं. बट वो चीज सही नहीं है,
1: लोभ आ जाता है मन में तुरंत.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और उसके अलावा देखिए, ये पास्ट रिटर्न्स पे बेसिस पे होता है, एक आपको एक खाली इंडिकेशन दे रहा है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस एक लंबे समय में देखें, रोलिंग रिटर्न्स पे, या फिर एक लॉन्ग होराइजन में 3 साल 4 साल 5 साल, और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में, कि जैसे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो उस फंड ने अपने कैटेगरी के बाकी फंड्स के तरह कैसे काम किया है. केवल अभी ठीक पिछले कुछ 1-2 महीने की परफॉर्मेंस या 6-7 महीने की परफॉर्मेंस एक अकेला कारण नहीं होना चाहिए कि आप उस फंड में निवेश करें.
2: आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग अकार, यू नो, होल्ड्स स्पेशली ट्रू नाउडेज, बिकॉज़ वी हैव बीन सीइंग मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो लाइक यू आर सेइंग दैट व्हेन यू आर असेसिंग अ फंड, व्हेन यू आर यू नो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गो बाय अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस. वी हैव टू लुक, एंड लाइक आई सेड, द मार्केट इज वोलेटाइल राइट नाउ, सो इट्स बेटर इफ अ फंड इज डूइंग वेल और हैज डन वेल, यू नो,

0: उस केस में आप एक और मिड कैप फंड ऐड करिए, बट केवल खाली एक यही कारण नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी इतना अमाउंट हो गया है कि 5 लाख का उसमें पूंजी इकट्ठी हो गई, इसलिए मैं दूसरे एक और फंड में लगा देता हूँ, अब इसमें हो गया। अगर वो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनी हुई है और फंड्स में निवेश है, आपने ठीक ठाक करा हुआ है, इसके अलावा आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी करा हुआ है, तो उस सिनेरियो में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़े पड़नी चाहिए कि आप किसी एक और फंड को ऐड करें, क्योंकि वहाँ पे वरना फिर एक आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे और बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे।
1: जी, अगर कई बार ऐसा होता है, और अभी हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी वही बात बताई जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, कि हम SIP कर रहे होते हैं और साथ के साथ हमारे पास लमसम भी अमाउंट होता है। आपने कहा, हम जब शंकर जुड़े हुए थे भोपाल से, तो आपने कहा कि जो लमसम अमाउंट है, अगर वो अमाउंट अलाउ करता है तो आप उसको SIP के तौर पर इन्वेस्ट करें, ना कि आप लमसम लगाएं पैसा। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
0: देखिए, जब भी आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली जो आपकी परचेज कॉस्ट है आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं। जैसे कि इसको एक अगर मैं एक उदाहरण में समझाऊं, मान लीजिए आज किसी के पास एक 1 लाख रुपए लमसम है, वो
1: जी
0: इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने पूरा का पूरा आज मार्केट में डाल दिया, और एकदम ही डालने के बाद एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो जो उसका पूरा का पूरा पैसा है वो आज के एक मार्केट पॉइंट पे घुस गया है और वो एक रिस्क बन गया, एक एंट्री पॉइंट का रिस्क बन गया। वहीं पे अगर उन्होंने ये पॉइंट, ये जो अमाउंट है, कुछ 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करा होता तो वो सारा का सारा पैसा आज इन्वेस्ट
1: तो
0: नहीं
1: वो
0: हुआ
1: तुरंत
0: होता,
1: लाल में नहीं जाता।
0: बिल्कुल तुरंत लाल में नहीं जाता, और वो आगे आने वाले समय में जब मार्केट नीचे गिरा होता वो ज़्यादा खरीद पाते, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट सस्ता हो गया, हमने ज़्यादा चीज़ें
1: बाइंग
0: खरीद
1: डिप।
0: ली। बिल्कुल, तो एक आपके जो परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर देता है और आपका जो रिस्क है वो उससे कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में गलत एंट्री पॉइंट में घुसने का।
1: बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है सुभाष। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
2: नमस्कार सर।
3: जी, सवाल पूछे सुभाष जी।
2: नमस्कार मैडम।
3: नमस्ते, सवाल पूछे प्लीज।
0: नमस्कार सुभाष जी।
2: सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि निफ्टी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो होनी चाहिए मेन, या कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए?
0: नहीं, मेन उसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। देखिए, जितने भी सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये फंड्स ऐसे नहीं होते कि इनमें एक फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये फंड्स केवल आपका जो मार्केट है, जैसे निफ्टी आपने खुद बोला, उसको ट्रैक करेंगे। जिस रेशियो में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में

0: नेक्स्ट फंड का चुनाव कर सकते हैं.
1: We do have a next caller from Delhi. Sujan Negi is calling us from there. But before we take your call, Sujan, Prachi, why don't you give us how the gold silver prices were during the week?
2: बिल्कुल श्रोताओं, अन्य खबरों में सोने और चांदी के भाव समझ लेते हैं. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. मजबूत अमरीकी डॉलर, अमरीकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों की धारणा इस उम्मीद से भी प्रभावित हुई कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में भी आक्रामक मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 152,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ 231,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया. कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 1.2% की गिरावट के साथ $4,441.90 प्रति ट्राई आउंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 1.4% फिसल कर $66.04 प्रति ट्राई आउंस पर आ गया. और सुजान नेगी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते,
2: बहुत अभिनंदन.
3: हाँ जी मैम, मेरे दो सवाल हैं. पहला तो ये है कि मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मनी मतलब मैंने लगा रखी है, उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है मेरे पैसे, तो वो माइनस में दिखा रहा है, तो क्या मेरे को स्विच ओवर कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड में? और करना चाहिए तो कौन से फंड, मुझे को अब कौन सा फंड लेना चाहिए, और स्विच करने का मतलब चार्ज लगता है क्या? तो यही कुछ क्वेश्चन है मैम मेरे.
0: देखिए सुजन जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है, और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. तो केवल उस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के वजह से आप एकदम से ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपको उस फंड से जाना चाहिए. अभी थोड़ा सा उसमें रहकर कुछ उस फंड को थोड़ा और समय दीजिए और देखिए उसका जो रिटर्न्स है. यहीं पे दूसरी चीज़ आती है, जो एक आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्विच करते हैं तो क्या उस स्विच करने के चार्जेस लगेंगे. देखिए, जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में जाते हैं या निकालते हैं तो केवल दो तरीके के चार्जेस होते हैं, या जो एक कॉस्ट होती है, उनको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, जो आपको इम्पैक्ट करेगी. पहला है कि उस पर जो भी टैक्स है, टैक्स हमारा म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन्स के तौर पे लगता है, और जो इक्विटी फंड्स है यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% रहता है. लेकिन यहाँ पे एक न्यूएंस है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटीज़ के और इक्विटी फंड्स के जो भी आपकी गेन्स होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के होते हैं, वो पहले 1.25 लाख पर टैक्स की छूट होती है, उसके बाद 12.5% लगता है. और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका जो टैक्स उस गेन्स पे वो 20% लगता है. दूसरा एक कॉस्ट रहता है एग्जिट लोड का. अगर आप एक फंड के एक डिफाइंड पीरियड से बहुत जल्दी निकालते हैं तो वहाँ पे वो आपके NAV का कुछ परसेंटेज काट लेते हैं.
2: दिल्ली से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार.
2: नमस्कार
4: रस्तोगी जी को भी नमस्कार.
0: नमस्कार
4: सर, मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 साल के लिए, तो दो अच्छे मल्टी कैप फंड बता सकते हैं?
2: फंड स्पेसिफिक तो हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य सवाल हो तो जरूर अगले सप्ताह आप संडे को हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Let's move on to the next story. The 7 core OPEC plus countries, Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep the grouping's oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision comes after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing disruptions to the oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruption around the Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC plus production decisions on oil, global oil supplies and prices. And let's take the next call. Kunch Bihari is calling us from Mathura. Welcome to the program. Please ask your question.
5: Dhanyawad. मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताते हैं कि आपका जो पैसा है एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, वो मैनेजर किसके द्वारा

0: बिठाए जाते हैं उनको क्या बेनिफिट है जो हमारा पैसा कंपनियों में इधर लगाते हैं, क्या वो हमारे फायदे के लिए ही ठीक है, क्या कभी वो हमारे को लॉस भी करा सकते हैं।
1: से जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये उस फंड म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा नौकरी पे रखे जाते हैं, उनको एक काम असाइन किया जाता है और वो लोग एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं। सो फंड मैनेजर्स का रोल ही होता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है आप और मेरे जैसे लोग, अगर हम लोग शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चेक कर सकते कि कब कौन से स्टॉक में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग पढ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से और एक काम करते हैं। सो उनका फ़ायदा बेसिकली ये कि उनका जॉब है, दे आर बीइंग पेड फॉर दिस।
2: अन्य खबरों में घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह पश्चिम एशिया में होने वाले घटनाक्रम, कमोडिटी कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और मुद्रा बाजार में होने वाले बदलावों पर रहेगा। प्राथमिक बाजार में मुख्य बोर्ड के 12 आईपीओ अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े समेत प्रमुख आर्थिक संकेतक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस बीच जापान, ब्रिटेन और यूरोजोन के जीडीपी के अनुमान भी जारी किए जाएंगे। चीन में पीपीआई और व्यापार से जुड़े आंकड़े प्रमुख आर्थिक संकेतकों में शामिल होंगे जिन पर निवेशकों की नजर होगी।
3: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface or UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, US tariff pressures and high dollar clearing costs.
2: आकार कार्यक्रम में आने के लिए मेरे और अनुभा के और हमारे तमाम श्रोताओं के और कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar. Namaskar.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:41 और 5 सेकेंड। अब महफिल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत की, जहां हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर के सदाबहार नगमे को जिनकी धुन

आज भी दिल में वही कशिश पैदा करती हैं। आज का ये पहला नगमा 1954 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आर पार से। इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाज दी है गीता दत्त जी ने। गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत तैयार किया था सदाबहार संगीतकार ओपी नैयर ने। आर पार का संगीत अपने चंचल अंदाज, लय और शहरी मिजाज के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है, और इसी संगीत यात्रा में ये गीत अपनी एक अलग पहचान रखता है, और वो गीत है बाबूजी धीरे चलना। इस गीत में एक शरारत है और नटखट अंदाज भी, तो दूसरी तरफ गीत के अल्फाज में छिपी है एक दिलचस्प सी नसीहत कि मोहब्बत की राह में जरा संभल कर कदम बढ़ाएं, क्योंकि दिल का मामला है जनाब, जहां जरा सी जल्दबाजी भी की तो कहानी बदल सकती है। गीता दत्त की आवाज की खासियत थी उसमें मिठास भी थी, शोखी भी, और भावनाओं की बेहद स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी। इस गीत में उनकी आवाज का यही अंदाज हम सबको बेहद पसंद है।

सलमान पार का ये नगमा था, आवाज थी गीता दत्त जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। और ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है, 1957 में आई ये बेहद खूबसूरत फिल्म भाभी से। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने। इस फिल्म में

किरदारों में बल्ला साहनी, पांडारी बाई, नंदा, डेजी ईरानी, जवाहर कौल, श्यामा, राजा गोस्वामी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। और इस फिल्म की खास बात यह है, इस फिल्म की नहीं बल्कि इस फिल्म के जिस गीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं उस गीत के पीछे की एक बेहद खूबसूरत कहानी है। दरअसल चित्रगुप्त जो इस फिल्म के संगीतकार थे, इस गाने के लिए एक कुछ अलग तरह का रिदम ढूंढ रहे थे जो पतंग की ढील और खिंचाई को महसूस करा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडियो में एक असली पतंग मंगवाई, रिकॉर्डिंग रूम में एक असिस्टेंट को खड़ा करके पतंग की डोर को लगातार खींचने और ढीला छोड़ने के लिए कहा, ताकि उसकी जो सरसराहट की आवाज़ होती है वो माइक्रोफोन पर कैच कर सके। उसी असली आवाज़ के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और वही सरसराहट इस नगमे में भी जरूर सुनाई देगी। तो आइए सुनते हैं फिल्म भाभी का वही बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा था फिल्म भाभी से, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस बेहद खूबसूरत महफिल गीत मेरे मनमीत में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दिल की दास्तान हुआ करते थे। आज की हमारी अगली पेशकश यानी अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगला जिसमें एक बेहद खूबसूरत बात कही गई है, खूबसूरत फिल्म भी है और ये गायक महान गायक हैं, जिसमें टूटे हुए दिल की कशिश, जुदाई का दर्द और मोहब्बत की बेबसी सब कुछ एक साथ महसूस होता है। और यह नगमा है 1946 में आई फिल्म शाहजहां का। फिल्म में इस गीत को अपनी आवाज दी महान गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल, जिन्हें हम केएल सहगल के नाम से जानते हैं। इस गीत की एक खास बात यह है कि इसमें सहगल साहब की आवाज का वो दर्द सुनाई देता है जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता है। उनकी गायकी में बनावटीपन नहीं बल्कि एक सच्ची तड़प है और गहरी भावनात्मकता भी महसूस होती है उनकी गायकी में। फिल्म शाहजहां का संगीत उस दौर के बेहद मशहूर और प्रतिभाशाली संगीतकार नौशाद ने तैयार किया था, जबकि गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। इस तरह सहगल

नौशाद ने तैयार किया था, जबकि गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। इस तरह सहगल साहब की दर्द भरी आवाज, मजरूह के अल्फाज और नौशाद साहब की धुन, तीनों ने मिलकर इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया।

आज़ाद फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी हमारी मुलाकात। गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज

0: के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगर से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को कल दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। चीन के शेंझन में सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल्स में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टेंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उप विजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. Three persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. After the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. The University of Delhi has expressed deep pain and sorrow over the building collapse in Satyaniketan. Meanwhile, Sri Venkateshwara College of the University will remain closed today in the wake of the incident. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swaminarayan Hindu Mandir in Paris, through video conferencing, Mr. Modi said, from technology, AI and defence to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said, the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections. He said history bears witness to the sacrifices of Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and the hearts. Union Home Minister Amit Shah has said, the government has prepared a three-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a four-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah stated that drugs worth around 1.89 lakh crore rupees were seized between 2014 and 2026.
2: 14 से 26 में
3: बिटवीन 2014

0: 2026. The quantity of drugs seized has increased significantly to more than 1 crore 19 lakh kilograms. The value of these seized drugs stand at approximately 1.89 lakh crore rupees. Between 2014 and 2026, the government led by Narendra Modi has destroyed approximately 48,66,000 kilograms of drugs.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan has urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. He called upon youth to lead healthy and disciplined lives and contribute towards building a drug-free India. He also advised students to use social media constructively and not allow it to consume excessive time. Mr. Radhakrishnan was addressing the convocation ceremony of Sri Manta Sankaradeva University of Health Sciences at Guwahati in Assam. He yesterday reached Guwahati on a two-day visit to Assam. Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and the 13th of this month. The 18th BRICS Summit will bring together leaders of BRICS member and partner countries, outreach countries and the heads of international organizations. As part of the security preparations, Delhi police conducted motor cascade rehearsals and reviewed security arrangements in the national capital yesterday. National Zoological Park, New Delhi organized the 13th Sunday Bird Walk and the 3rd Butterfly Dragon Walk to promote science and biodiversity conversation among citizens yesterday. In badminton, Indian pair of Satvik Sai Raj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title at the China Masters in Shenzhen yesterday. The Indian duo defeated China's He Ti Jing and Ren Xiang Yu by 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash to secure India's first ever title at the China Masters. And that is the end of this news bulletin.
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
4: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकाने आप सभी का स्वागत करती हूं साथियों मन की बात के विस्तार इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं उन हस्तियों की उन घटनाओं की उस शख्सियत की जो किसी न किसी प्रकार हमें प्रेरित करती है और हमें एक नया पक्ष जानने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर देती है हमें कुछ पढ़ने का अवसर देती है कुछ जानने का अवसर देती है माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं हमेशा ही प्रेरित करते हैं और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव हैं आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं लेखक हैं इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं फिल्म समीक्षक हैं विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में संजीव जी आपका स्वागत है
5: बहुत बहुत धन्यवाद
4: प्रदीप जी आपका स्वागत
6: धन्यवाद बहुत बहुत
4: तो आइए श्रोताओं अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है
7: मेरे प्यारे देशवासियों महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस

0: फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबेन।
1: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर की लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
2: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार। लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत ही उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखे अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में, तो हम दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी।
2: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं। तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं, तो अपने नाम को बिल्कुल सार्थक करते हैं। उत्तम कुमार सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है।
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी, बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायर या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से और उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
3: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी,
3: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर

0: याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
0: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसीलिए बनाई उनको ध्यान में रखकर, तो वो इस तरह का उनका वो था। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया, ये बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह के सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा की जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें अगर नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे इस तरह की फिल्म बनाई, एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कल कलकत्ता से, आप तो कोलकाता बोले आप, कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार को मिलती है शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों भी जो भी रही, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ। तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा भी है फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए, बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है, और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पर ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार में। उत्तम कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक इतने की, और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया, और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य भी अभी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ, इतना सैलाब था, जन सैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के शायद कभी ना देखा गया। बाद में तो हम चाहे नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अंश हुए पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे। जी, यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
0: देखिए उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े से, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म
1: जी,
0: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी
1: जी।
0: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहाँ इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहाँ खूब चली, और उत्तम कुमार भी बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली बनाई, और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई, अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहाँ बंदी वहाँ चली यहाँ नहीं चली, लेकिन अमानुष वहाँ भी चली और यहाँ भी चली, तो उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही

0: सकते हैं,
1: जी
0: जो हमारी उसका टाइटल सॉन्ग है
1: जी
0: और उसको जो इंदिवर ने लिखा है और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है,
1: दिल
0: उस
1: ऐसा किसी ने
0: दिल
1: मेरा तोड़ा
0: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
1: जी।
0: आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द हैं, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, शर्मिला
1: जी
0: टैगोर पीछे लेटी हुई है और जब वो गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है,
1: और
0: लेकिन बाद में
1: ये शब्द भी अमानुष
0: अमानुष
1: जो
0: बना के छोड़ा। अमानुष
1: जी
0: मतलब अभी भी लोग सोचते हैं अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति
1: जी
0: हो, जो
1: जी
0: अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं।
2: अमानुष जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के। क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से
1: जी
2: और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहां,
1: जी
2: क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने
1: और
2: आएंगे,
1: नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे या
2: नायक की
1: नहीं।
2: छवि से जोड़ पाएंगे, जो
1: जी
2: सत्यजीत ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम
0: असल
2: कुमार
0: में
2: जी
0: इनका
2: की,
0: जो है उसके अंदर एक
2: है
0: शराबी,
2: ना।
0: एक ऐसा व्यक्ति है
2: हाँ
0: जो दिल का बड़ा अच्छा है लेकिन वो शराबी बन गया है बहुत ज्यादा। उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शर्मिला टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है
1: जी
0: वो। तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए हो रहे हैं,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने लिखी।
2: हाँ लिखिए लिखिए।
0: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी
1: जी
0: में जो भी फिल्में आई वो कमलेश्वर ने लिखी।
1: जी
0: तो
1: यानी ये गीत हमें
0: ये गीत
1: बहुत
0: तो
1: सारी कहानियां
0: बहुत
1: एक
0: ही
1: साथ
0: सारी
1: देता
0: कहानियां
1: है।
0: जोड़ता है।
2: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
1: जी
2: कि
1: बिल्कुल।
2: ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया और यह फिल्म बहुत पसंद की
0: अब
2: गई।
0: देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा।
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी
0: अमानुष
1: तो
0: का।
1: ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था
0: जी।
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम। लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जब घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से
0: जी,
1: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन
0: जी
1: होने वाला था उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था।
0: जी,
1: तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है।
0: जी,
1: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई, 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी।
0: जी,
1: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं। जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं,
0: जी
1: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे।
0: जी,
1: इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
0: जी,
1: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब।
0: जी,
1: इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया, वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो

0: लोकेशन पर वो सबको वो मुरमुरी और पकौड़े खिलाते थे, और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे, और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें ऐसी है, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है कि आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की
1: जी। और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे।
0: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
1: जी,
0: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी, और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा कलेक्ट किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
1: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। और दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है 5,000 रुपए उन्होंने उस समय दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी
1: जी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी, और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई, और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया, जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई तो रूस में इसलिए चली कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि लोग उदास निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उबारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से, या अपनी सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था, तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने, की अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना। हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हो, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाए, सब जगह देखे जाए, तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमत्ता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठे उनके पैरों में जाकर बैठ कर उनको फूल दिया, सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था
1: जी।
2: तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने।

0: वैजयंती वाला को हीरोइन लिया, वैजयंती वाले से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती है कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई, वैजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडिया कर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा जी, शताब्दी का
1: जी, इस अर्ध शताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
1: जी,
2: उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया
1: जी।
2: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में, इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी, और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि अग्नि परीक्षा जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था छोटी सी मुलाकात जिसमें वो खुद ही थे
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला में बनी,
0: आशापुर देवी के उस पर थी
2: हाँ
1: जी,
2: उपन्यास जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही क्लासिक फिल्म है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी
1: जी,
2: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो फिल्म जिसका नाम चुपके चुपके है, और धर्मेंद्र उसमें
1: परिमल त्रिपाठी का
2: रोल में आते हैं, और धर्मेंद्र की वो बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में अगर हम उनकी हम 5 पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से
1: जी,
2: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं

0: मेरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं,
1: जी
0: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम कुमार जी ने निभाया
1: जी,
0: था,
1: और अंगूर तो बहुत चर्चित फिल्म
0: गुलजार
1: थी
0: साहब की अंगूर,
1: जी।
0: वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रिमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये देखते हैं
2: शेक्सपियर के उस पे थी
1: जी, कॉमेडी ऑफ एरर्स
2: जी,
1: जी।
2: लेकिन इसको बंगला में बहुत चली हुई।
0: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं
1: जी।
0: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
2: वैसे ही धोती कुर्ता बांधा उन्होंने, जैसे उसे बांधा
0: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और राजेश खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था
1: जी।
2: और इसका ये बता दो, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के
0: जी,
2: वो भी हुगली में वही पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहाँ वो किया गया। और शिवया टैगोर बता रही थी कि वहाँ इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसे दिखा रहा था बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, कहते हमने उसमें भी काम किया, 5 दिन हमने उस गाने को शूट किया वहाँ पर।
1: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय जी।
0: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
1: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा
1: जी,
2: अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चतुर्थी जैसे आप जानते हैं दोनों बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे 5 साल छोटे थे इनसे
1: जी,
2: और उन्होंने वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो की फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान
1: जी,
2: दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से
1: जी,
2: तो वो फिल्म नहीं चली। तो इनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही, उसके बाद जंजीर से चले वो 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था
1: जी।
2: आप देखिए इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो है सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, आप जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत वीरे भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे तो दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है। कि बाकी और एक बेटा था, उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था वो इनके जो फादर थे, हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा, उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देखकर, ये नहीं कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो थिएटर में काम करना शुरू किया। तो फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टिदान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई, और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार आज हम याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो उनको भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे

0: प्रोडक्ट उसका आ रहा है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार। उत्तम कुमार कौन है? नई
1: जी
0: पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है? क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगवान में ज्यादा नहीं, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने,
1: जी
0: और जैसे
1: और
0: बताया
1: संजीव कुमार जी से चेहरा
0: संजीव कुमार
1: मिलता
0: साहब,
1: था
0: देखिए जो
1: तो
0: आंधी
1: उनसे भी
0: फिल्म है
1: जोड़ते हैं
0: वो
1: लोग।
0: भी कमलेश्वर ने लिखी थी,
1: जी
0: और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले, उत्तम कुमार को। अब आपने बात की मुझे याद आ गया,
1: जी
0: जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि वो उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो
1: किस
0: रहे।
1: फिल्म में?
0: आंधी फिल्म है,
1: आंधी में।
0: 1973 में जब ये
1: जी
0: फिल्म हुई, तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें, सिर्फ
1: सुचित्रा सेन के
0: सुचित्रा सेन
1: साथ।
0: इसके अंदर थी, और
1: जी
0: सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह का।
1: जी
0: तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और
1: जी
0: शिल्पा टैगोर भी इसको बहुत याद करती हैं, तो शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही। तो इनकी दो अभिनेत्री हैं तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह, बाकी सुप्रिया देवी जो उनके
1: जी
0: साथ बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, तो वो लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का,
1: जी
0: फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रहे। तो
1: जी
0: इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया दूसरे ने ज्यादा कमाया तीसरे ने कम कमाया,
1: जी
0: तो इस तरह आता था कि बहुत आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में रंगमंच पे बहुत काम किया, रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों
1: जी
0: ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
1: और उस
0: जेनिफर,
1: समय रंगमंच जन जागरण का कार्य
0: हाँ
1: करता
0: उनकी
1: था।
0: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही वो भी
1: जी
0: उनको शशि कपूर को वहीं मिली, क्योंकि वो थिएटर करती थी उन अपने
1: जी
0: फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है, मैं तो
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, मैं जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रंगमंच के अंदर,
1: जी
0: उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा जिस जिसने फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे। तो
1: जी
0: इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है खासतौर, कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा
1: सांस्कृतिक
0: की
1: राजधानी भी कहा
0: राजधानी है
1: जाता था।
0: संस्कृति की।
1: जी बिल्कुल
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें,
1: जी
2: और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे,
1: जी
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं जो मैं चाहता हूं उसे मेंशन करूं, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी
2: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी
2: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव,
1: जी
2: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने, भूपेन
0: भूपेन
2: हजारिका
0: हजारिका को भी याद
2: जी जी
0: किया।
2: उन सबको उन्होंने मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है, और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं
1: जी
2: तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है, कि
1: जी
2: सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है
1: जी
2: और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है, और खास तौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की
1: जी
2: उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है
0: देखिए राज कपूर
1: उसमें
0: तो
1: इन
0: ऐसे रहे,
1: गानों
0: उनका
1: का भी।
0: परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
1: जी
0: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया,
1: जी
0: उनसे चर्चा की, उन्होंने वो ही सॉफ्ट पावर की चर्चा वहां पर की,
1: बिल्कुल, कई
0: और
1: पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई
0: बिल्कुल, और
1: देता
0: राज
1: है।
0: कपूर भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं
1: जी
0: भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े जिनको बुलाया नहीं जाता, दोनों ने अभी अभी सत्यजीत रे उस तरह के, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही नहीं सकते, उनकी अब जन्म शताब्दी देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उत्तम कुमार की
1: उत्तम कुमार
0: वहां संगीतकार के रूप में हमने, अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी
1: जी
0: मनाई है,
1: जी
0: अभी

0: आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राजकपूर, देवानंद, इन सबकी हम जो त्रिमूर्ति रही, राजकपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना। तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा, उनका बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया जब हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी। और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के। बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग

0: अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जनसाधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे। और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है? इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छी दिशा मिलती है और
0: जी।
1: जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं। सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था, ये हम लोग जानते हैं। उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है।
0: जी।
1: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, उसका सामाजिक काम करते हुए।
0: जी।
1: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं।
0: जी।
1: इस तरह के कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10, 20, 25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है।
0: जी।
1: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेंजी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है। इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
0: जी
1: कि ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी।
0: जी तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
2: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है।
0: जी,
2: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है।
0: जी,
2: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअली लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते हैं।
0: लेकिन
2: हमने क्या किया, देखिए, हमने जिस दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में, कि जब ये बहुत आप किसी से कोई, आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं, आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 में, उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश साहब बच्चन जो मेरे गुरु रहे, हम तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हम लोग जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे, हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है कि उनके मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल दे, परसों दे, तरसों दे, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए, कभी कभी दीजिए, नहीं पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने, लेकिन हम देखिए, उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, ताराचरण बढ़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, उस समय के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। ताराचरण बढ़ियाती जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसके स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं। उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए, जनपद पे गाड़ी रोक कर, जब हमने रिकॉर्डिंग कर कर आया, आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षक की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सराह ली जाती थी कि आप जानते हैं, सिनेमा देखते हैं, लोगों की नब्बी पहचानते हैं, तो आप बताइए क्या है, हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म चित्रा बनाया, चलेगी नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो महावीर बढ़ियातिया थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे पास फोन आया, मैं चिंता मत कीजिए,

0: ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देखा तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें ये नहीं कि उसने क्या बोला मैंने क्या बोला उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए, हम आपके कौन के लिए, सब लोग बोल रहे तो मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, इसने कहा था ऐसे होगा, पोस्टर दिखाया ये होगा, तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचे हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाए पॉपुलर हो जाए बहुत सारे पैसे कमा लें, एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए आज भी हम बिल्कुल
1: 111

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइस कन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें इसरो के निजीकरण या उनकी भूमिका कम किए जाने की बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और ना ही उसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम दुनिया ना माने और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत मदन मोहन का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म का को निर्देशित किया था वी अवधूत ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी माला सिन्हा, प्रदीप कुमार, शेख मुख्तार, सुलोचना लाटकर और डेजी ईरानी ने। अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

की आवाज में संगीत सलील चौधरी का, और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था आशा पारेख और सुनील दत्त पर। ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा रॉय और नज़ीर हुसैन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए निरूपा रॉय को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है आशा जी की आवाज़ में, और आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज़ें थी आशा जी और रफ़ी साहब की, संगीत रोशन का और गीतकार थे ज़ाहिर लुधियानवी। ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1967 में, जिसका निर्देशन किया था एम सादिक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। अगला गीत फिर से आशा जी की आवाज़ में।

स्वादिष्ट मेगा हर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 32 सेकंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला अगला गीत गीता दत्त की आवाज में।

फिल्म का नाम आर पार और आवाज़ थी गीता दत्त की, संगीत ओपिनियर साहब का और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का। ये फिल्म आई थी 1954 में और ये एक कॉमेडी, रोमांटिक के साथ साथ कॉमेडी फिल्म भी थी जिसे निर्देशित किया था गुरुदत्त साहब ने। संगीत ओपिनियर का था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जॉनी वॉकर, श्यामा, शकीला, जगदीप और जगदीश सेठी ने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई मूवी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और ये एक प्रेम कहानी थी जो 1960 में आई थी। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने और राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया और ये फिल्म अपने संगीत की वजह से श्रेष्ठ रही। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

गीत सुहानी प्रोग्राम का सफ़र आज के लिए यहीं तक। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के संत निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्र निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की दुखद घटना के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइस कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुमसा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुमसा प्रेम। आता भी किसको है ऐसा जादू वादू, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन, और महक उठती है मेरे मन की मौलश्री। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 55 सेकंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

0: वाकई मिलन की रुत तो है, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो दिल एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और यहाँ जुड़ते हैं हम दिल से दिल तक। अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश, अगला गीत आप तक पहुँच रहा है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम सभी के पास अपने नियर डियर से कहने के लिए बहुत कुछ होता है, पर हम सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, है ना? और सही वक्त पर आए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है कि जब दिल की बात कह दी जाए वही सही वक्त है। अगला गीत लता मंगेशकर और रफी।

बस ये बात तो सच है कि जब दिल किसी एक के प्यार में रंग जाता है तो फिर संसार के जितने भी रंग होते हैं वो सारे फीके लगने लगते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात जरूरी समझी। वक्त हुआ है दो

बजकर 39 मिनट और 10 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, मगर दिल की तसल्ली को जरा इजहार हो जाए।

लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, यूं मेरे दिल में चले आओ कि आहट भी ना हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सतनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात करके स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिससे इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा, ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इसमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोकने का मन तो नहीं है, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी भारती। मुझे यही अपनी रात की हम सफ़र, मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमराही में। ये इश्क शायद वही है जिसमें कोई पास ना होकर भी दिल के सबसे करीब रहता है, जिसका ख्याल रात की खामोशी में भी मुस्कान बनकर होठों पर आ ही जाए, वही तो मोहब्बत है।

इंतजार की भी अपनी एक खूबसूरती होती है। जब दिल को यकीन हो कि जिस शख्स का इंतजार है उसकी एक मुलाकात सारी बेचैनी को सुकून में बदल देगी, तो वो इंतजार इंतजार नहीं होता।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय है प्रोग्राम हमराही का। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी अपने तक पहुंचने के लिए भी होता है। और जब सफर में किसी की याद साथ हो तो दूरियां भी कम लगने लगती हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहब्बत मोहब्बत हमेशा बड़ी बड़ी बातों की मोहताज नहीं होती। कभी किसी के कह दो मीठे बोल ही दिल में ऐसी जगह बना देते हैं जिसे वक्त भी मिठा नहीं पाता।

दिल को कब किससे और कैसे मोहब्बत हो जाए ये शायद दिल भी नहीं जानता। बस एक एहसास धीरे धीरे दिल में उतरता है और फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है।

मोहब्बत के बाद दुनिया वही रहती है, मगर उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। फूल कुछ ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, रातें कुछ ज्यादा हसीन, और किसी की याद कुछ ज्यादा ही प्यारी लगने लगती है।

आज की रात बस इतना याद रखिए, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो हर पल साथ दिखाई दे, सच्ची मोहब्बत तो वो है जो हर दूर रहकर भी दिल में अपना एहसास बनाए रखे। कुछ रिश्ते मुलाकातों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं, और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान है। इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति और छोड़ के जा रही हूँ बहुत ही प्यारे से गीत।

0: इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वह 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन में तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियांगकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासनों ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। फुटबॉल में भारत ने AFC Under-20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ताशकंद में कल अपने अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इसके साथ ही भारत ने 20 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के मुख्य चरण में जगह बनाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. A multi-story building housing, a student paying guest accommodation.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है कार्यक्रम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की नया रास्ता फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है आशा भोसले ने, संगीतकार एन दत्ता, गीतकार साहिल लुधियानवी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म प्यासा सावन से किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार ओपी नायक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नसीब से, सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी और अनवर की आवाज में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म देवता से आशा भोसले उषा मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार एसडी बर्मन, गीतकार साहिर लुधियानवी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नजराना से लता मंगेशकर मुन्ना और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।

बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार

0: सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिदेशक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वो संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कैलिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी सिक्किम के मंगन जिले में चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों का और अटकलों का स्पष्टीकरण दिया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को 11-21, 21-13 और 21-17 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। सुबह की पहली किरण के साथ भोलेनाथ का स्मरण मन को शांति देता है। जीवन में चाहे कितनी भी उलझने हो, विश्वास रखिए जिसके सर पर महादेव का हाथ हो उसके रास्तों में उम्मीद का उजाला हमेशा बना रहता है। आज का दिन प्रार्थना से शुरू करें और संकल्प लें कि किसी के जीवन में दुख नहीं बल्कि मुस्कान का कारण बनेंगे।

मीठे शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक प्रेम से कहा हुआ वाक्य किसी थके हुए मन को हिम्मत दे सकता है। इसलिए आज कोशिश करें कि हमारी वाणी किसी के लिए बोझ नहीं, सहारा बने। शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है।

जिंदगी भी एक सुंदर संगीत की तरह है, कभी सुर ऊंचे होते हैं तो कभी धीमे। जरूरी ये नहीं कि हर सुर हमारे मन के मुताबिक हो, जरूरी ये है कि हम अपनी धुन को विश्वास के साथ निभाते रहें। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी जिंदगी का गीत अपने अंदाज में गाइए।